0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कल G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया। इसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम अभियान शामिल है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल-सीसी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री सानाए ताकाउची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। G7 देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वादा किया। G7 ने कैंसर का इलाज ढूंढने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियांग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इनमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिन्हें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत अभियान NMDA के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMDA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहल का भी अनावरण करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज मुंबई के वर्ली साइकिल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि ये आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता के एक अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी नौ बज केंद्र से प्रस्तुत छे विचार बिंदु, विषय छे समय, पठन छे जितेश दवे नो।
2: विचार बिंदु। सुनते रहिए आकाश।
3: व्याख्या कोई बहु सुंदर रीते करी छे, તમે રાહ જુઓ ત્યારે તે ધીમો હોય છે, તમે જ્યારે મોડા હો ત્યારે તે ઝડપી હોય છે, તમે જ્યારે દુઃખી હો ત્યારે તે બાળકણો કે પીડાદાયી હોય છે, તમે જ્યારે સુખી કે આનંદમાં હો ત્યારે તે ટૂંકો હોય છે, જ્યારે તમે પીડા કે વેદનામાં હો ત્યારે તે અનંત કે અખોટ હોય છે, તમને કંટાળો આવતો હોય ત્યારે તે લાંબો હોય છે, આમ જીવનમાં ઘણી વાર સમય તમારી લાગણીઓ અને તમારી મનોસ્થિતિ દ્વારા નક્કી થતો હોય છે, ઘડિયાળના કાંટા દ્વારા નહીં, આથી જ હંમેશા ખુશ રહો, તમારો સમય સારો છે એવું સતત માનતા રહો, અનુભવતા રહો।

વચન બહુ આપે સાંભળ્યું. વિષય હતો સમય. પ્રથમ સમય તારો ભાઈ રમણી.

इंश करने के लिए माइनर भालू आ पहुंचे हैं, किंतु अपने उत्पाद से जब वे उसे वेदी से नहीं उठा पाए तो उसके शरीर पर अपने भीम काय दांतों और लातों का प्रयोग करना आरम्भ कर दिया, किंतु उसका ध्यान तब भी बंद नहीं हुआ। माइनर भालुओं ने तब वहां की स्त्रियों की पेश पकड़कर महल से बाहर घसीटना आरम्भ किया। जब अपना धैर्य खो बैठा और उठकर वानरों के पैर पकड़ पकड़ कर उन्हें धरती पर पटकने लगा, किंतु उस प्रकार उसका यज्ञ तो भंग हो ही गया। रावण अपनी सेना फिर से सजाकर युद्ध भूमि की ओर अग्रसर होता है। शकुन रूप में उसके सिर पर गेंद बना रहे हैं, किंतु इसकी अनदेखी करके वह युद्ध का डंका बजवाता है और एक बार फिर घमासान युद्ध होने लगता है। युद्ध के बाद युद्ध, फिर और युद्ध। देवताओं का धैर्य टूटने लगा है। वे प्रभु से विनती करते हैं कि अब और विलंब न करके वे रावण का वध करें। श्रीराम अपना शरण धनुष लेकर जब युद्ध के लिए

0: राष्ट्रिय सहभागित्वस्य दूरदृष्टिः वसुधैव कुटुम्बकम् इत्यस्य कालातीत दर्शनस्य आधारेण अस्ति। विश्वमेकः परिवारः अस्ति। फुटबॉल क्रीडायां गतरात्रौ न्यूजर्सी क्रीडांगणे प्रथम समूहस्य आरम्भिक क्रीडायां फ्रांस देशेन सेनेगल देशं 3-1 इति अंकैः पराजितम्।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनीष शर्मा। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और रुवांडा में फिर से पहले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज

0: उसमें से आपका भी वायदा क्या है? G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेकर राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक अवकी सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉन डेर लेयन के साथ त्रिपक्षीय बैठक भी करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज के साथ भी बैठक करेंगे। कल सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बैठक की थी। यमुना नदी के जीर्णोद्वार के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये फैसला यमुना को स्वच्छ करने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर कुछ ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रूपये तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह का वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि देश में टेलीग्राम ऐप को क्यों फिलहाल बंद किया गया है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। फ्रांस की ओर से किलियन मबापे ने 2 गोल किए और वे अब 58 गोल के साथ अपने देश के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। एक अन्य गोल ब्रैडली बारकोला ने दागा। सेनेगल के लिए एकमात्र गोल मबापे ने किया। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल और उत्तर प्रदेश में भी तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। The French city of Evian remains the epicenter of global diplomacy today as the G7 summit enters its crucial phase. With India participating as a partner country, all eyes are firmly set on a highly anticipated bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump, scheduled for later today on the sidelines of the summit. This marks the first face-to-face meeting between the two leaders since the last

0: सुनते रहिए आकाशवाणी भुज।
1: त्रीजो कने छे भक्ति संगीत नो कार्यक्रम वंदना। प्रथम सांभळी शोभा जोशी ने, रचना छे तुलसीदास ने।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। कब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं?
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदना आप सांभ।

हम संगीत में कार्यक्रम मनोरंजन सवारी रसवागे अच्छे कार्यक्रम बाबली जबल सवारी पर अग्यार वागे जेमा सत्तर वरे पलेजू डॉक्टर रतन सिंह रास्ते वच्चो सियार जी कविताओं वक्ता चेतना बिन रास्ते

संजय समेत पचास मिनट स्थानिक समाचार और सेवाएं अन्य समय में अमेरिका लिख रही हूँ अंदर वगैरह के लगाते

0: सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: रंगा ये पंखा तो खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या बापू भरेगा।

0: आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। संघर्ष वाले इलाकों में नाविकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किसान बैंक परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA

0: प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जीदावों पर भरोसा न करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है, जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाले पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुम्बकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हित है, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी है। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुम्बकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नहयान को इस वर्ष भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्यौता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या और मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री सोनो ताकायोशी के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुंच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।
3: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है, पर मंदिर के जाने का रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी। पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
2: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सफियान अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाल बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। यह सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। NTA के महानिदेशक अभिजीत सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
4: करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी न हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने समय में सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। NTA ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाले नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्र और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरल, वही और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। और आज के समाचार पत्रों के सुर्खियों के साथ है सरफिरोजी।
5: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने G7 शिखर सम्मेलन और नीट UG पुनर्परीक्षा के आयोजन से जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। लोकसत्ता की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज, पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। अखबार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात, वार्ता आज। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है G7 में मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा। पत्र ने नीट UG की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर स्थायी प्रतिबंध की खबर को भी अपना शीर्ष समाचार बनाया है। दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को विस्तार से पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है पेपर लीक ना हो इसलिए 22 तक टेलीग्राम बंद। पत्र ने इस वजह से आम उपयोगकर्ताओं को होने वाली परेशानी का भी विस्तार से विश्लेषण प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार आजादे मुआवेनी के लेख को प्रकाशित किया है। शीर्षक है क्या ये तिमरान की जीत है। इस लेख में कहा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ज्यादातर अमरीकी सैन्य दखल जटिल संघर्ष में बदलती गई जिसे शायद ही कोई जीत कहे।
0: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमरीका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किछाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला में दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Prime Minister Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avignon, France today. Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan reached consensus on implementation of long-pending Keshau Dam project to revive Yamuna River. National Testing Agency warns candidates against fake NEET re-exam paper leak claims. IMD issues orange alert for heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in second ODI of 3-match series in Lucknow this afternoon. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has called on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats.
7: Addressing an outreach session of G7 summit in Avignon, France, Mr. Modi said that conflicts in West Asia have disrupted global trade and caused loss of life, highlighting the growing risks to maritime trade and the human cost of instability in West Asia. Prime Minister said, it is our responsibility to ensure the safety of the seafarers who connect all nations through global maritime trade. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. The Prime Minister also noted that international partnerships should move beyond the donor-recipient paradigm to one of solidarity and equal ownership. He also stated that lack of respect for international law was the biggest hurdle to building international solidarity and needed to be addressed as a priority. The French city of Avignon remains the epicenter of global diplomacy today as the G7 summit enters its crucial phase. With India participating as a partner country, all eyes are firmly set on a highly anticipated bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump, scheduled for later today on the sidelines of the summit. This marks the first face-to-face meeting between the two leaders since they last met in Washington, D.C. in February 2025. During today's engagement, they are expected to hold wide-ranging discussions to deepen bilateral cooperation across multiple sectors while also deliberating on pressing regional and global issues of mutual interest. A report.
1: This meeting also holds significance as India has emerged as a major global power, with the international community increasingly looking towards New Delhi for solutions to complex global challenges. India's growing role in shaping discussions on global issues reflects its expanding diplomatic outreach and active engagement with world leaders across forums. During an outreach session at the summit yesterday, Prime Minister Narendra Modi underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. He also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said this is reflected in India-led initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the Global Biofuel Alliance, Mission Life, and Ek Ped Maken and Kankan. He further said that India's vision of international partnership is rooted in the timeless philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family. Ankit Kumar, Akashwani News, Avignon, France.
7: Besides his meeting with the US President, Prime Minister Modi is also scheduled today to participate in the G7 working session on reviving balanced, inclusive and sustainable economic growth for the benefit of all, and the working lunch on ensuring the safe, rapid and effective deployment of artificial intelligence. The Prime Minister will also hold a trilateral meeting with EU Council President Antonio Costa, European Commission President von der Leyen, and a bilateral engagement with German Chancellor Friedrich Merz. Earlier yesterday, the Prime Minister held bilateral meetings with Canadian Prime Minister Mark Carney, United Kingdom Prime Minister Keir Starmer, and the President of the United Arab Emirates, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, on the sidelines of the summit. The G7 nations have announced a series of initiatives to strengthen global health and development cooperation with several partner countries, including India. The G7 leaders called for a coordinated international response to the re-emerging Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo and Uganda. India, Egypt, Kenya, and South Korea joined the appeal for enhanced measures, including contact tracing, border surveillance, and community engagement. The leaders also pledged support for the development of vaccines, diagnostics and treatments for the rare Ebola strain. Home Minister Amit Shah chaired a crucial meeting in New Delhi yesterday on the long-pending Keshav Multipurpose Dam project aimed at the rejuvenation of the Yamuna River. In a statement, Home Ministry said that Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan have agreed to sign a memorandum of understanding for the implementation of the project. Following the signing of the MOU, the Keshav project will be placed before the Union Cabinet for approval. Under the agreed funding pattern, the central government will provide 90% assistance for the water component of the project, while the remaining 10% will be shared by the six states. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're listening to the Morning News. National Testing Agency, NTA, has urged parents and candidates to beware of scammers ahead of NEET examinations. In a social media post, NTA said that scammers on Telegram are running channels demanding money ranging from 14,000 to 25,000 rupees with claims of sharing the re-exam paper.
8: It clarified that there is no leaked paper for the re-examination, except that fake proof videos showing chats from before the exams are also being circulated. NTA also shared a video of its Director General Abhishek Singh explaining the reason behind blocking the access to the app in the country. According to media, Mr. Singh said that NTA is committed to ensuring that no malpractice happens and assured that every question paper has been made in a complete secure manner. He said the agency has added layers of security to ensure that nobody who is involved in setting up the question papers, translating, printing, moving or storing them till the date of examination is compromised in any manner. With Rishu Jaiswal, Priya Mandal, Akashwani News, Delhi.
7: India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashwani News brings you a special feature, 12 Saal Vishwas Ke Vikas Ke Jan Kalyan Ke. Today we focus on the steps taken by the government towards preservation and promotion of the country's heritage.
2: Over the past 12 years, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, India has undertaken several landmark initiatives to preserve, promote and celebrate its civilizational legacy, instilling a sense of pride among millions of citizens. One of the most significant moments came in January 2024 when Prime Minister Narendra Modi performed the Pran Pratishtha of Ram Lala at the Grand Sri Ram Janmabhoomi Mandir in Ayodhya, marking the fulfillment of a centuries-old aspiration. Built in the traditional Nagara style, the temple stands as a symbol of faith, devotion and India's architectural excellence. Talking to Akashwani News, Pankaj Jaria, a devotee who recently visited the temple, shared his experience.
9: A few days ago, I went to Ayodhya where we had the darshan of Prabhu Shri Ram. The arrangements are very good. The government has made excellent arrangements to manage the crowd and even stands in line to have the darshan. There are local facilities for people to keep their belongings. There is also a facility for drinking water. Very good arrangements have been made and there are also beautiful tableaux and displays which look very divine.
2: In Ujjain in Madhya Pradesh, the first phase of the Mahakal Lok project was dedicated to the nation in October 2022. The total cost of the project is around 850 crore rupees. The Grand Corridor showcases magnificent sculptures, murals and architectural elements depicting the life and legends of Lord Shiva. Equipped with modern technology and AI-enabled monitoring systems, Mahakal Lok beautifully blends heritage with innovation. In Varanasi, the Kashi Vishwanath Corridor, inaugurated in December 2021, has transformed the pilgrimage experience by directly connecting the sacred Kashi Vishwanath Temple with the River Ganga. Spread across 5.5 acres, the project has enhanced accessibility and revitalized one of India's most revered spiritual centers. From 2014 to March 2025, work commenced on 580 development projects in Kashi, undertaken at a total cost of over 48,000 crore rupees. Talking to Akashwani News, a resident of Varanasi, Priyanshu Singh, said that the Kashi Vishwanath Corridor is providing ease of access to pilgrims visiting the temple.
10: My name is Priyanshu Singh. I am a resident of Varanasi. Prime Minister Narendra Modi has done a lot of work in Kashi. Earlier, the road leading to the temple used to be quite narrow, which caused a lot of inconvenience. But now, since the corridor has been built, the crowd management is more efficient and people can visit and have a darshan more easily.
2: Satyan Akhtar, Akashwani News, Delhi.
7: women's cricket, India will take on Afghanistan in the second ODI of three-match series at the Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium in Lucknow today. The match is scheduled to begin at 1:30 p.m. Shubman Gill led Men in Blue are currently leading the series 1-0 and will aim to clinch the series in today's clash. In women's cricket, India will take on Netherlands in their second Group A clash of ICC Women's T20 World Cup at Headingley in Leeds today. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian time. In football, Norway returned to the FIFA World Cup in style with a 4-1 win over Iraq in their Group I opener at the Boston Stadium in the United States this morning. Norway's Erling Haaland netted twice to make his World Cup debut special. The scoreline now put Norway top of Group I. Earlier, France defeated Senegal 3-1 in the opening game of Group I of FIFA World Cup 2026. India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall today at isolated places over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim. Moderate to heavy rainfall is expected during the day over parts of Assam, Meghalaya, Bihar, Kerala and Mahi. And now for a look at today's newspapers. It's over to Tanvi Khurana.
11: Thank you, Sarabjit. Most newspapers today open with the details of the G7 in France, addressing an outreach with Trump present, Modi flags seafarers' safety at G7 is the lead in the Hindustan Times. The Indian Express informs government bans Telegram until 22nd of June in bid to secure NEET retest. The Statesman in its editorial piece captioned, Peace Without Peace writes, the announcement of a framework agreement between the United States and Iran has understandably been greeted with relief. Oil prices have retreated from their wartime highs, stock markets have rallied and governments dependent on Gulf energy supplies have welcomed what appears to be a retreat from the edge. But relief is not the same as resolution. For weeks, the conflict demonstrated how a regional confrontation can swiftly become a global economic problem. The Delhi Tribune says to curb pollution, Delhi may soon allow only BS6 vehicles. And finally, with the weather being benevolently pleasant on Tuesday, the Statesman has captured a picture of people relaxing under the shade of trees on the lawns near India Gate. And with that, it's back to you, Sarabjit.
7: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Prime Minister Modi to meet U.S. President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avignon, France today. Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan reached consensus on implementation of long-pending Kishau Dam project to divide Yamuna River. National Testing Agency warns candidates against fake NEET re-exam paper leak claims. IMD issues orange alert for heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in second ODI of three-match series in Lucknow this afternoon. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
12: आकाशवाणी भुज प्रस्तुत छे आज में मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन दरमियान एक उच्च स्तरीय कार्य सत्र में उपस्थित लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहूं कि विविध संस्कृति और विविध भौगोलिक परिस्थितियों साथ विश्व की सबसे वधु वस्ती होवा छता भारत आजादी पछी वधती जती जनभागीदारी साथ विश्व की सबसे मोटी लोकशाही तरीके उभरी आयो कृषि और खेडूत कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में खरीफ 2026 सीजन के देशभर में तैयारियों की समीक्षा की केंद्र सरकार द्वारा नानी गमों और कफ सिरप में वेचाण में आपने छूट पाची खींची लेवाई नीट यूजी पुनः परीक्षा अगाऊ सरकार 22 जून सुधी ऑनलाइन मैसेजिंग एप टेलीग्राम पर प्रतिबंध मुको मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल कहूं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जाहिर क्षेत्र में एकमों ने वधु कार्यक्षम पारदर्शक और स्पर्धात्मक साथ व्यवसायिक अभिगम थे कार्यक बनाया आरोग्य मंत्री प्रसन्न पानशेरियाए गांधीनगर की पीएम श्री बोरिज शाला खाते थी टीबी और डीपीटी त्रिगुणी रसीकरण महाअभियान प्रारंभ कर રાજ્યમાં એક જ વર્ષમાં 5 કે તેથી વધુ વખત ચલણ ધરાવતા વાહન ચાલકોનું ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ હવે તાત્કાલિક ધોરણે રદ કરાશે.

राम कार्यक्रम सँगै पञ्जीमिरे भावीकै चन्दुबजा झिझक रिङ राम राम राम राम राम मेरे बा मेकन डाडा अच्छी है त जियो त जहर में थियो सकर थियो मुझा सेण मरी वेंधा मारवा रोंधा भले जावे पर आज चेता त जीनो जाए आखिर तो मरनो जाए तो मरीज बनने आए तो पोता कोला अभुआ वेण कुछ हो कोला खराब वेण कुछ हो जहर थे ने कोला जीनो पाके देखे जहर लगे ऐसा शब्द कोला पाके चूना खपे तो चूनो जबे तो मीठी जबान वापरो मीठा शब्द चूना सामले मारू के सांता मिले अड़ा शब्द चूना घरे फेरे पांजी प्रकृति अड़ी थी ने कि पांजी जबान जेड़ी में कि सामले मारू के वक्त थे उनके जहर जेड़ा लगो पा तो वक्त थे ने कोला पर सामने वेनो खन थे ने कोला ना वेनो शक्कर थे ने कोला ना वेनो तैड़ी खासी गाल जाना चाहता कि जियो तो जहर में थियो शक्कर थियो मुझा सेण आखिर तो मरीज में है अने जो को मरी वने था उन्हें जी जो को कुटिया गालियों रहती हूँ कि भलाई जी गालियों खासा वेल जी गालियों रहती हूँ जो को वक्ख भगोड़ी ने वक्ख घोड़ी ने जो को मैं के पीरा है उनके कोई जाद न था करिए तो ताके खासे मारो से जाद करिए तेरा पां वेल कुछ हो तेरी गालियों करियो अने सामने मारो के कभी पन वक्ख न थिए तेरा पां वचन बोलियो तेरी खासी गाल से अचो रहन कार्यक्रम की शुरुआत करियो मेरे वो रहन कार्यक्रम में भजन भाव में वार्तालाप में सुने समझे जेड़ी गालियों में लोक गीत में भजन में रहन शब्द अचे तो तबे रहन में तालक मलक जी गालियों में खाली खिलकारा मिलकारा मस्करियों में इन्हीं में तो गुजी गालियों पण वे अने जीवन जो मरम पण वे तो खिलजे खिलजे पण जीवन जो मरम सीखी गेनो इज पांच वही कार्यक्रम एटले रहा ताचो जीवन जी गुजी गालियों सुनेला कुजी गालियों जा मरम कढेला भजन भाव होना खपे तो कार्यक्रम की शुरुआत करें खास भजन से तो सुनो तुलसी गढ़वी की आवाज में खास ही भजन

0: ટી ગઢવી જે અવાજ ને પણ અહીં ભરંસ્યો અને હમણાં અચો પણ શું ખાસ એવડો વાર્તાલાપ વાર્તાલાપ જો મથાડ્યો હોય કમ નાય કોઈ ઓખો શ્રી દિનેશભાઈ પ્રમાણે ખાસ એવડો સમૂહી વાર્તાલાપ
1: આજ પણ કમ નાય કોઈ ઓખો એ બારે મેં બહુ માલુમ કરી ના છું સક્રિયતા એ જીવન જેને નિષ્ક્રિયતા એ મૃત્યુ ગીતા મેં પણ કૃષ્ણ ભગવાન કહ્યું કે હે માનવ તું કર્મ કરી દો
2: ખેતીવાડી મેં
1: बदल गए ने घरेलू उपयोग की वो समय अनुसार टेक्नोलॉजी के अपने से खेती में सुधार आता गया अन्य अब तो घने विकास सके भी है अपने पूर्वज प्रदेश में कम ओछो हो जिनके करे मारुए के पिंजो वतन छड़ी ये प्रदेश में कलाली में रुक दो अगर मेरू खुद कामदार तो भाई सके तो अपने पिंजो वतन में कंपनी रोजी रोटी नहीं सके तो पहले कच्ची चीज बाल करियो तो अज्ञान जो धंधा रोजगार ना ते करता आज अनेक घना वधारे कम खुले आए हैं दाखला तरीके पासपोर्ट उद्योग की गाल पाकर हूँ तो पाने कच्छ में ही उद्योग खूब वधे हुए अने बे प्रदेश में पर घनों वधे हुए इनके लगभग कम धंधा पर खूब वधे आए तो मारू धारे तो इनके आशा निधि कम मिल सके तो अगर खेती बाड़ी बिल्कुल मानव शक्ति आधारित हुई आज तो ट्रैक्टर अने भाई घनी मशीनरी जो उपयोग करे नहीं तो जैसे करे खेती में जी जो विकास थे हुआ है अने पैदा सुपर उधारे के नहीं सका देती तेरी भी थे सुपारी कम जो बाटो भाग लो तो वो समय में सुपर खेती वाली जा साधन बनाई दवा अने अपना ने जी भाई बना बने दवा पर अज नई टेक्नोलॉजी अपने के मशीनरी से फर्नीचर रात रचे जो कभी कोई प्रथम जो को चार भी कर दे लग दो अज वो चार कनक में करी सके तो आपने जाने में नहीं लग दी पर हिप्पी सोई बनाना चाहिए कारखाने में तेरो जगह रहते अलग अलग इतने कम कार्य में रहते तो इतने तेरो विभाग क्या अने तेरे तेरो जने के रोजगारी मिले स्विट्जरलैंड जैसे देश में सीधे होते तो उत्तर को नामा हूँ ही घड़ियाल की धंधा होती है यार मेरे विभाग का भाग रहे हूँ दुकान घर कारखाने में राज्यों में भी जो घड़ियाल बना लो भी गया विभाग ने मेरे कम कार्य बैठा पाजे गणित पसंद की बात करी तो ते रुको भावर अपने खारो पटाए बामारू घोड़े उन्हें नहीं चलाइए तो वो एक घर में रहते रहते गायन करो करिए सजोड़ी निकले की इतने पंजे हजार उपलब्ध अपने कोठा सूच से घर में घर की पहले कंजरी तोड़ अपने बड़ा पहले जन बड़ा एक और बहुत काम करे जो कम करिए थे हाले तक सजे देश में तेजी खपत घर थी है मैंने कहता मैंने जरूर भारत में थी है

0: CIET प्रस्तुत करता है।
1: सभी श्रोताओं को विनेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार कि ये स्वीकार करते हैं शुरू एक सुंदर विचार से जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, उमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी ने।
1: लिखते हैं, सकारात्मक सोच हर समस्या में समाधान खोज लेते हैं।
0: वाह, बहुत सुंदर विचार। आपके इस विचार से सच में हम सबको प्रेरणा मिलती है। तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदारे जी का।
1: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सैजीव साहू।
0: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास,
1: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
0: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो जैसा कि हमने कहा था, इस सप्ताह हम बात करेंगे कुछ अनूठे झीलों के बारे में। तो श्रोताओ, आइए जानते हैं आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज का विषय बहुत रोचक होने

आज हम एक ऐसी झील के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत ही रहस्यमय और पवित्र माना जाता है। श्रोताओं जरा अंदाजा लगाइए मैं किस झील की बात कर रहा हूँ। आपको संकेत तो मिल ही गया होगा कि वो झील रहस्यमय भी मानी जाती है और पवित्र भी। जी हाँ श्रोताओं, यदि आपके मन में मानसरोवर झील का नाम है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। तो श्रोताओं आपको बता दें कि दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4,590 मीटर है और इसका क्षेत्रफल करीब 320 वर्ग किलोमीटर है। आइए जानते हैं कि ये झील है कहाँ। तो श्रोताओं आपको बता दें कि ये झील तिब्बत और चीन के पर्वतीय क्षेत्र में पड़ती है। इसका सबसे निकटतम पर्वत है कैलाश पर्वत। आपको ये भी बता दें कि भारत की ओर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे या सिक्किम के नाथुला पास से की जाती है। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इसके निर्माण का कारण है भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर। इस टक्कर के कारण भूमि ऊपर उठी, पर्वतों में दरारें और बड़े बड़े गड्ढे बने जिससे इन नदों का पानी जमा हो गया। इसीलिए मानसरोवर झील को टेक्टोनिक झील भी कहते हैं। अब एक बहुत ही रोचक तथ्य आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ। अभी आपने सुना कि ये मीठे पानी की झील है, लेकिन श्रोताओ इसी झील के बिल्कुल पास एक और झील है जिसका पानी खारा है। इसे राक्षस ताल कहते हैं। ये एक बंद झील है। जल के निकास और वाष्पीकरण की भिन्न प्रक्रियाओं के कारण यहाँ का पानी खारा है, क्योंकि यहाँ का पानी वाष्पित होता रहता है जिसके कारण लवण और अन्य खनिज इसी में रह जाते हैं। दोनों सरोवरों को कैलाश पर्वत, इन नदों और वर्षा से ही जल मिलता है। एक छोटी नदी इन दोनों सरोवरों को आपस में जोड़ती है जिसे गंगा च्यू नदी कहते हैं। तिब्बती भाषा में नदी या जलधारा को च्यू कहते हैं। जी हाँ, सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है श्रोताओ। आइए अब सुनते हैं एक और बड़ी रोचक बात इस झील के बारे में। वहाँ गए यात्रियों के अनुसार मानसरोवर झील रंग बदलने वाली झील है। सूर्योदय के समय ये नीले और हरे रंग की दिखाई देती है, लेकिन सूर्यास्त के समय इस झील का रंग सुनहरी आभा में बदलता हुआ दिखाई देता है। आपको एक और बात बता दें कि मानसरोवर झील सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती है। जहाँ तक धर्मों की बात है, ये झील हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखती है। स्वभाव एक और बड़ी खास बात, मानसरोवर झील को कैलाश पर्वत का दर्पण भी कहा जाता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। जी, इसका उत्तर है मानसरोवर झील में पास के कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है, खासकर साफ और शांत मौसम में। मानसरोवर और कैलाश पर्वत क्षेत्र से सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। बौद्ध धर्म में मानसरोवर झील को मापाम यिमत्सो कहते हैं, जबकि जैन मान्यता में इस झील को ऋषभ देव से जोड़ा जाता है जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है। आइए बात करते हैं इस झील में पाए जाने वाले जलीय जीवों की। तो श्रोताओ, यहाँ ठंडी जलवायु और दुर्गम परिस्थितियों के कारण जैव विविधता सीमित है, फिर भी कुछ अनुकूलित जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इस झील में मछलियों की बड़ी अच्छी मात्रा है। पानी इतना साफ है कि अंदर तैरती हुई मछलियाँ भी 14 मीटर की गहराई तक करीब करीब साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। यद्यपि मान्यताओं के कारण यहाँ मछली पकड़ना या मारना निषिद्ध है। ये झील पर्वतीय पक्षियों और पशुओं के लिए एक आदर्श ठिकाना है। दुर्लभ प्रजाति के हंस, ब्राह्मणी बतख और पहाड़ी कौवे यहाँ मिलते हैं। जहाँ तक पशुओं की बात है, छोटे तिब्बती गधे और दुर्लभ प्रजाति के याक भी यहाँ मिलते हैं। तो श्रोताओं अब करते हैं आज की चर्चा को समाप्त, लेकिन जाते जाते एक और रोचक तथ्य आपके साथ साझा करता हूँ। मानसरोवर झील जीवन से भरपूर है। यहाँ पशु पक्षी और दुर्लभ वनस्पतियाँ प्रचुरता से मिलती हैं, लेकिन पास के राक्षस ताल में खारे पानी के कारण लगभग कोई मछली या जलीय वनस्पति नहीं होती। इसीलिए लोक मान्यता में मानसरोवर झील को अच्छाई और राक्षस ताल को बुराई का प्रतीक माना जाता है। कुल मिलाकर मानसरोवर न केवल अध्यात्म और आस्था का केंद्र है, लेकिन ये ऊंचे दुर्गम स्थान की पारिस्थितिकी तंत्र का भी बेजोड़ उदाहरण है। तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है। आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audiofcieat.nic.in। तो श्रोताओ, ये थी रोचक जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है। आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता

0: cieat.nic.in। हमारा IBRS नंबर भी नोट कर लें, 8800-4404-559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की रोजाना की उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। और बड़े हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं कार्यक्रम मंगल पांडे।
1: ये कार्यक्रम अमर शहीद मंगल पांडे के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका के बारे में नाटक के द्वारा सूचना देता है।
2: अरे आशीष, दीपिका कहाँ से आ रहे हो भाई?
3: बैठो
2: दादी जी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था।
3: पूछो।
2: ये 1857 क्या है? आजकल अखबारों में कई लेख देखे हैं।
3: ऐसा है आशीष बेटा, ये कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की है, जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह किया था।
2: अच्छा।

0: सभी देशवासी देश को आजाद कराने के लिए कूद पड़े थे। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ क्योंकि सभी देशवासी ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को मुक्त कराना चाहते थे। यानी आजादी आजादी आजादी। राजे महाराजे, नवाब, किसान, मजदूर, अमीर गरीब, छोटे बड़े सभी लोग और जाबाज सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। उस समय हिंदुस्तान के लोगों पर एक जुनून सवार था। देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार था।
1: अच्छा,
0: ऐसा ही एक जाबाज सिपाही था, मंगल पांडे।
1: मंगल पांडे?
0: हाँ, मंगल पांडे। 1857 के आरंभिक विद्रोहियों में से ये सबसे पहला विद्रोही था। उसने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया। उस समय ये लड़ाई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लड़ी जा रही थी।

0: दीजिए। लड़ाई में कौन कौन थे?
1: दीपिका, इस लड़ाई में कई नायक और नायिका थे, जैसे अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और राजा कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
0: बहादुर थे ये।
1: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गीत भी लिखे गए।
0: दादी दादी, हमें मंगल पांडे की कहानी सुनाओ ना।
1: वो कहाँ के रहने वाले थे? सुनाती हूँ। देखो बच्चों, मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे।
0: अच्छा।
1: बचपन में उनकी माँ उन्हें देश प्रेम की कहानियाँ सुनाती थी। मंगल पांडे फौज की नौकरी बहुत पसंद करते थे।
0: अच्छा।
1: वो कलकत्ता गए और बैरकपुर छावनी में सिपाही के रूप

0: में भर्ती हो गए। और धीरे धीरे वो एक होनहार सिपाही बन गए।
1: दादी उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई?
0: भाई उनकी ट्रेनिंग हुई बैरकपुर छावनी में, और ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही नियुक्त हो गए। फिर उन्होंने कई साल फौज की नौकरी की।
1: अच्छा दादी जी, लेकिन वो हीरो कैसे बने?
0: बेटा उन्होंने बैरकपुर छावनी में बड़े बड़े कारनामे किए।
2: क्या क्या? जरा सुनाओ ना दादी।
0: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, 25 फरवरी 1857 का दिन था। बैरकपुर छावनी के सिपाही बहुत नाराज थे।
2: ऐसा क्यों?
0: अंग्रेज गाय और सूअर की चर्बी लगा कारतूस चलवाते थे। इसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही परेशान थे। देसी सिपाही एकजुट हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए।

0: हैं, देश को गुलाम बना के लूट रहे थे, अब वो हमारा धर्म भी पेश करना चाहते हैं। इसी प्रकार तो सभी चलती है।
1: दादी फिर क्या हुआ? फिर दूसरे दिन खाने के लिए मस में सभी सैनिक इकट्ठे हुए और कारतूसों की चर्चा करने लगे। सैनिक गुस्से में चूर थे। उन्हीं में से एक सैनिक बोला,

0: हुआ दादी?
1: फिर धीरे धीरे ये खबर देश की अन्य छावनियों में भी फैल गई। सैनिकों की बैठक पर बैठक होने लगी।
0: फिर क्या हुआ दादी?
1: सैनिकों की नाराजगी देखकर अंग्रेज मंगल पांडे वाली 19वीं देसी रेजिमेंट को तोड़ना चाहते थे।
0: अच्छा?
1: सिपाहियों को अंग्रेजों के इस चाल की जरूरत पड़ गई। 26 मार्च रविवार का दिन था। सैनिकों में और असंतोष बढ़ गया।

0: उसके बाद क्या हुआ?
1: बैठक के बाद बैठक हो रही थी, माहौल बहुत गर्म था। एक भरी बैठक में मंगल पांडे ने सिपाहियों को ललकारा और कहा,
2: ये फूल है भारत को गुलामी की तरह चक्री हुए हैं, अब ये हमारे

दिल में गुस्सा और तनाव था, शायद कुछ होने वाला है। जो रोज की तरह परेड के मैदान में मंगल पांडे भी आया। उसका आना बहुत गर्म था, गुस्से से चेहरा लाल था। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों की परवाह न करके परेड की लाइन से निकलकर सिपाहियों को ललकारा। परेड के मैदान में अंग्रेज ऑफिसर मंगल पांडे का रौद्र रूप देखकर कांपते स्वर में उसने सैनिकों से कहा, ऑफिसर पर गोली दाग दी। ऑफिसर तो वही गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वॉन आया। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई।

0: 强你，你开过你。
1: उसके बाद क्या हुआ दादी?
0: उसके बाद तुरंत ही कर्नल वीलर आया और मंगल पांडे को अरेस्ट करने का हुक्म दिया।

एडमिरल व्हीलर वहाँ से तुरंत लौट गया। तुरंत ही जनरल हेयर्स एक फौजी टुकड़ी के साथ मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आए। मंगल पांडे ने गोरों की टुकड़ी आते देखकर अपनी बंदूक से खुद को गोली डाल दी।

0: साथ क्या हुआ? उसके बाद ठीक होने पर सैनिक अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के समय मंगल पांडे ने छाती तान कर खुले शब्दों में कहा,
1: मैंने ये दफ्तर पर गोली मारी थी और मैं उनसे किसी प्रकार का निजी देश नहीं था। ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं राष्ट्र की है। मैं अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहती हूँ।
0: क्या कोई कार्रवाई हुई? हाँ, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों में खौफ का माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही सैनिक अदालत बैठी।
2: दादी जी, सैनिक अदालत का फैसला क्या था?
0: सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये इस आंदोलन की पहली कुर्बानी थी। पूरे देश में फांसी की खबर फैल गई। भारत माता का वो सपूत था जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। इसके बाद आजादी की लड़ाई जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई।
2: इसके बाद क्या हुआ दादी?
0: इस बलिदान के कारण आज सारा देश मंगल पांडे को याद करता है। उन पर फिल्में बनाई गई। लोक साहित्यकारों ने तो उन पर कई गीत भी लिखे। मंगल पांडे पर प्रसिद्ध नारायण सिंह की कविता जो भोजपुरी भाषा में लिखी है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण।

0: कविता ज्ञान के वीर मंगल पांडे का गौरव गान किया गया है। जब संतावनी के रारी झोली वीरन के वीर पुकार भीड़ बलिया का मंगल पांडे के बलबेदी से ललकार भी मंगल मस्ती में चूर चलन पहला बागे मशहूर चलन गुरनी का पलटनी का आगे बलिया के बाका सूर चलन गोली के तुरंत निशान भईल जननी के भेंट परान भईल आजादी का बलबेदी पा मंगल पांडे बलिदान भईल जब संतावनी के रारी भैली वीरन के वीर पुकार
1: दादी इस लोकगीत का अर्थ क्या है?
0: इस लोकगीत में उल्लेख है कि 57 के युद्ध में वीरों को क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया गया।
1: अच्छा
0: बलिया के मंगल पांडे मस्त होकर क्रांति के लिए गोरों की सेना के सामने छाती तान कर खड़े हो गए। इससे भारत की सोई हुई वीरता जाग गई जिसमें बैरकपुर की बैरकों ने अंग्रेजों की सेना में खलबली मचा दी।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मंगल पांडे और प्रस्तुत है कार्यक्रम बहादुर कशिका।
1: ये कार्यक्रम भारत के बहादुर बच्चों के निर्मित कार्यक्रमों की श्रृंखला से लिया गया है, जिसमें एक बहादुर बच्ची कशिका के जीवन और उसकी बहादुरी को विस्तार से बताया गया है और किस प्रकार इस बहादुर बच्चे ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर दूसरों को एक बड़ी विपत्ति से बचाया।
2: बेटी तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं, तुम लोग भी नाश्ता करिए नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है।
3: ठीक है माँ, हम नाश्ता कर लेंगे, पर देवेंद्र को तो आ जाने दो।
2: अच्छा ठीक है, देवेंद्र आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना, मैं पूजा करने जा रही हूँ।
3: अच्छा माँ। देवेंद्र भी आ गया।
4: दीदी मुझे बड़े जोर से भूख लग रही है।
2: चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो और अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना।
3: ठीक है माँ।
4: नाश्ता यही लाओ दीदी। ठीक है, मैं यही टीवी के पास बैठ कर खाऊंगा।
3: ठीक है, मैं अभी लाती हूँ।
5: होशियारी बन चुका।

अब इसकी आवाज बस यही सुन पाएगी।

0: शोर सुनकर भाटिया साहब के पड़ोसी इकट्ठे हो गए और दोनों चोरों को पकड़ लिया। लोगों ने चोरों की खूब पिटाई की। इसी बीच काशु यानी कशिका के पापा भी आ गए और पुलिस भी आ गई।
1: आज तो हमारी जान कशिका ने बचा ली, आज तो बंदूक
0: अगले दिन कशिका की बहादुरी के चर्चे सबके जुबान पर थे। मोहल्ले, रिश्तेदारों और स्कूल में कशिका की ही चर्चा हो रही थी। और जानते हो बच्चों, इस बहादुरी के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से कशिका को 1,000 रुपए का इनाम और प्रमाण पत्र मिला।
2: सुबह का कार्यक्रम बहादुर कशिका और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और रमेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का पेशा हुआ आकाशवाणी नब्बे केंद्र पर थी।
5: प्रस्तुत मुख्य समाचार। ऋषिकेश पटेल ने होटल में तैयार थनावा नेशनल मेरीटाइम कॉम्प्लेक्स की कामगिरी में समीक्षा करी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रसायन उद्योग में भी स्वैच्छिक आचार संहिता जारी करी। राजीनामा सिंह हमला में युवाने ना मौत बाद 2 सिंहों ने रेस्क्यू करी पांजरे पुरिया। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच 13 पुष्पों अर्पण कार्यक्रम अंतर्गत गुम थे 63 लाख की कीमत 410 मोबाइल शोधी ने मूल मालिकों ने परत कर। आरटीई हेठ खाली पड़ेगी 6,000 बैठकों में आर्टिकल थी चौथो राउंड। क्रिकेट में आज भारत और अफगानिस्तान वच्चे लखनऊ में बीजी वनडे, जब महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत का मुकाबला नेदरलैंड साथ थे। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल की अध्यक्षता में गांधीनगर खाते बैठक योजा, जेमा राज्य सरकार ने आगामी आयोजनों और नीतिगत विषयों ने महत्वपूर्ण चर्चा करवामां आवशे। जिल्लाना रणकांतिना विस्तारों तेमज मुंद्रा और नखत्राणा ना केटलाक गामों में प्री मॉनसून एक्टिविटी में वागरूपे झरमर वरसाद व्यवस्था नजीकना दिवसों में 24 से 27 आगमन थाय तेवी आशा प्रबल बनी। हवामान विभाग ने अनुमान मुजब आगामी 4 से 5 दिवस में चौमासु वधु आगळ वधशे, जो कि समग्र गुजरात में विधिवत चौमासा में आगमन माटे हजू थोड़ी राह जोवी पड़शे तेम हवामान विभाग ना वडा एके दासे जणाव्युं हतुं। अदानी संचालित गेम्स जीके जनरल हॉस्पिटल ना मेडिकल डायरेक्टर तरीके चीफ मेडिकल सुप्रिंटेन्डेंट डॉक्टर नरेन्द्र हिराणी ने नमणूक करवामां आवी। कच्छना 6 થી વધુ ઉત્પાદનોનો ભૌગોલિક સંકેત એટલે કે જીઆઈ ટેગ ઇનેટ થતાં સદીઓ જૂની વારસાગત કુશળતાને ઔપચારિક માન્યતા મળી। હવે પછીના મુખ્ય સમાચાર 5:10 મિનિટે

शुभ भार वर्ष के लिए अपने विकास का संकल्प कभी अटकता नहीं, पुरुषार्थ की गाथाओं क्यारे फूटती नहीं। यात्रा छह छिलना बार वर्ष के विकास में समर्पित यशस्वी वहा प्रधान श्री नरेंद्र भाई ने

जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिसे देश का बिजली बिल घटा है और

0: नया साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं। साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: सांभरजो बरियो खेलवा जाओ तो टोकन तो लीजो छे ने।
2: हाँ याद रखी ने लीधु छे। मने ये पण खबर छे के जे व्यक्ति ना नाम नो टोकन होय तेज व्यक्ति दरियो खेलवा जई सके छे। बीजा कोई ना नामे दरियो खेलवा जवू ए सजापात्र गुनो छे अने एम करवाथी माछीमारी नो लाइसेंस कैंसल थई सके छे अने डीजल पर मिलती सब्सिडी पण बंद थई सके छे।
1: ए ध्यान राखजो के शंकास्पद बोट विदेशी के अजाणी व्यक्ति देखाय तो तरत ज 1093 पर मरीन पोलिस ने जाण करवी।
2: हाँ मारी मा खाता नो पालन करीश अने टोकन लईने ज दरियो खेलवा जईश। गुजरात मरीन
0: संकल्प कभी अटकता नहीं, पुरुषार्थ की गाथाओ क्यारे घूरती नहीं। आ यात्रा छे छेल्ला 12 वर्ष थी विकास ने समर्पित यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेन्द्र भाई।

आगमन। बुलेट ट्रेन अनुबंध भारत में गतिशीलता की लिखा था एक नवा भविष्य ने। इन्हें गज नाम था भारत में आत्मविश्वास ने। 4 वर्षीय यात्रा छे गुजरात में अंत्योदय इन्हें गरीब कल्याण सेवा और सुशासन पीएम आवास हर घर जल किसान सम्मान आयुष्मान कलश थी मजबूत तथा जन जन में आत्मविश्वास ने। हम तो माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल प्रयासों की देश न ग्रोथ एंजीन गुजरात बनी रहू है ग्रीन एनर्जी भविष्य की आधुनिक टेक्नोलॉजी पावर हाउस आ विकास ने महायज्ञ ने वधु वेगवंतो बनाए विकसित भारत माटे विकसित गुजरात बनाए 12 वर्ष विश्वास न विकास न जन कल्याण ना।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। कभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं। साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: अच्छे पंथ चेतन सिंह फिल्म से अर्थ।

0: स्मार्ट सिटीज थी दुनिया में चली थी आधुनिकता। बुलेट ट्रेन और वंदे भारत में गतिशीलता की लखा का एक नवा भविष्य ने नाम पर भारत में आत्मविश्वास ने 12 वर्ष की यात्रा छे गुजरात में अंत्योदय जो गरीब कल्याण सेवा और सुशासन पीएम आवास हर घर जल किसान सम्मान आयुष्मान कवच थी मजबूत तथा जन जन आत्मविश्वास ने हवे तो माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल प्रयासों की देश नु ग्रोथ एंजीन गुजरात बनी रहू छे ग्रीन एनर्जी भविष्य आधुनिक टेक्नोलॉजी नु पावर हाउस आ विकास में महायज्ञ ने मधु वेगमन को बनाए विकसित भारत माटे विकसित गुजरात बनाए 12 वर्ष विश्वास ना विकास ना जन कल्याण ना
1: संगीत फिल्म दोस्ताना नाम केवल स्वर से किशोर कुमार ने आशा भोसले नाम

પેલી કવિતા કાગડો અને શિયાળ પૂરી થઈ.

कमर अख में झरे अंगार भरा सजद बुधी थी जी हिकड़ी तार सियार चेतो सिंह के हल पानी में न्यार तो करता जबरो डिठो तो जो की मैं भार परछायो पिंड जो डिठो जबर दिने तार छलंगी मारी प्यो पानी में बुढ़ी मयो विकरार थोड़े डीला तो खे राजा जो झंझार सी के पण तो छेतरे यूरत वडो सियार हाने वार्ता लोकड़ी ने सियार जी हिकड़े डी सियार के कुत्ते कयो हैरान कन पुछने तोड़ी विधा बजी छुटो वेरान लोकड़ी जोता डर दिखे कंद बचाए जान निंज नीचे बाई के कोठा आया स्वान आग

ढकियार राजा बने जी लालचे तोड़ियो पुआसियार बची वियो गारी मिजा तूपा पुठिया न्यार तोचे परोसे ईरियो पुनी वियो लाचार बची करी ने

सियार हिकड़ो डी उथले पुआ सियार निकरियो वन बिठे मतारे हेर के खादे जी थई मन लमी गिचीने सिंग वडा इसमे तो सजन अचता मुझा दोस्त तू करियो पान सबन मोए जना आया हली खेण लगा आई तन खेड़ू जार विछाई ने जले हेण जो तन मन धारियो तो जो थियो थई राजी मुझ मन गरीब विचारो हेण चे छोड़ाए मुझो तन जुनो दोस्त आयो हली छड़ाई कागड़ो यार दगो डने नरे दोस्त के लूर तू डोस यार हाणे जंगल जे मिल जानवर जी अने सियार जी वार्ता हिकड़े ॾींहुं ता गोठ वट रुलदो हुओ सियार पियो ता गुरियल कुंड में निकरी सकियो न ॿार मुएल जेड़ो थई जरे धणी न्यारे ता यार ॾेढी करी ॿारा कढे गुरियल थई सियार ओड़ी करी वे सीम में के भेरा सियार सिंह बाघ वानर अने सूअर हेण बगाड़।

0: भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखिए, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: श्रोता मित्र, आप सुनी रहे आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा केन्द्र नु प्रसारण। हवे प्रस्तुत छे फिल्म संगीत कार्यक्रम की शुरुआत करीशु पीयूष मिश्रा गायेला गुलाल फिल्म ना गीत थी।

0: की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अंत है विरासत की, मेरी मां भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। इसलिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। मनो ऐप या माई गांव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात
1: कार्यक्रम में संभव सुरेश वालकर ने साथ हुए गायली बैसी जीवन नहीं रचना।

0: આકાશવાણી અમદાવાદ વડોદરા રાજકોટ અને ભુજ બરાબર 1 વાગે આપ સાંભળશો દિલ્હીથી પ્રસારિત હિન્દીમાં સમાચાર.
1: નમસ્કાર, આકાશવાણી સમાચાર કે સાથ મેં નિગમ. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી G7 શિખર સંમેલન મેં આજ અમેરિકા કે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ કે સાથ બેઠક કરેંગે. આજ કી મુલાકાત મેં દોનો પક્ષો કે બીચ કઈ ક્ષેત્રો મેં આપસી સહયોગ કો મજબૂત કરના તથા આપસી હિત કે ક્ષેત્ર વૈશ્વિક મુદ્દો પર ભી વ્યાપક ચર્ચા કી સંભાવના હૈ. ગૌરવ હમારે સંવાદદાતા સે.
2: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है. अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है. वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार में राजनीतिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है. कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है. उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है. अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एरियो फ्रांस.
1: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष फोन डर लेयन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे. वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ भी बैठक करेंगे. इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे. भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं. प्रधानमंत्री ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्र मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नागरिकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है. फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं. बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है जो भारत के नेतृत्व वाले पहलों में दिखाई देती है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है. भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल किया है. श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था. भारत विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में शामिल है. यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किसाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है. इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल है. यह सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में हुई. परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाले नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सरकार परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी. पुदुचेरी मंत्रिमंडल में आज 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया. अखिल भारतीय NR कांग्रेस के विधायक पी राजवेंदु और VP शिवकोलुंधु तथा भाजपा विधायक GNS राजशेखरन को उप राज्यपाल के कैलाशनाथन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. अमेरिका और ईरान के बीच हुई शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरों मध्य इस सप्ताह तक खुल जाएगा. इनमें ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है. लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया.

Ataşmani. Savaşlar söz kodibunda rancışı, sovratın bu kesimacı. Evin mi buradan mıdır yarınlı mıdır yarınlı kampacı azor bir bakışı bir tatlı ödümşe. Ji saat şeker samalanma buradan mıdır ya vışvık dörü ya nargoni sorukşa, soru şiddetler var ya kalasya o samana cokun adı bacağına hakkı veri. Puducheri mıdır mıdır mı azor prağın nova mıdır yana samalış saati mıdır parışıdı vıstran turu. Narangiya vırş 2025 şalışma sorukşun utbağdan vedi ne rekord 1.8 lakh करोड़ रुपए पर पहुंचे। ब्रांड क्रूड में प्रति बैरल भाव 5.4 टका वृद्धि में 78.66 डॉलर था। हाल क्रिकेट में आज भारत और अफगानिस्तान वच्चे लखनऊ में बीजी वनडे जरा महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत का मुकाबला नेदरलैंड से है। समाचार विगतवार जी सात शिखर सम्मेलन तना निर्णय तबक्का में प्रवेश रहा है तेरे फ्रांस नो शहर एवियम आज वैश्विक राजद्वारियों के केंद्र रहा है। भारत भागीदार देश तरीके बात हो रहा है तेरे तमाम की नजर आज समिट दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएस प्रमुख डोनाल्ड ट्रंप वच्चे की खूब अपेक्षित द्विपक्षीय बैठक पर आज की मुलाकात दरमियान तो बहुविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग ने वधु गाढ़ बनावा व्यापक चर्चाओं करे तेवी अपेक्षा छे। साथे साथे परस्पर हितना प्रादेशिक और वैश्विक मुद्दाओं पर पण चर्चा कराशे। प्रधानमंत्री मोदी तमाम ने लाभ माटे संतुलित समाविष्ट और टकाऊ आर्थिक विकास ने पुनर्जीवित करवाना विषय पर जी सात कार्यकारी सत्र और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सलामत झड़पी और असरकारकता सुनिश्चित करवाना विषय पर कार्यकारी लंच में भाग लेशे। बाद में ईयू काउंसिल प्रमुख एंटोनियो कोस्टा यूरोपियन कमीशन प्रमुख वोन डेर लैन साथ त्रिपक्षीय बैठक और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज साथ द्विपक्षीय बातचीत करशे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तमाम देशों ने वैश्विक दरिया मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और खलासियों ने संघर्ष संबंधित जोखमों से बचाव हासिल करी है। फ्रांस में एवियन में जी सात शिखर सम्मेलन में आउटरीच सत्र ने संबोधता श्री मोदी कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्षों ने वैश्विक व्यापार में विक्षेपित कर जानहानि करी है। दरिया व्यापार मेटना बढ़ता जोखमों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता ने मानव खर्च पर प्रकाश पाड़ता प्रधानमंत्री कहा कि वैश्विक दरिया व्यापार द्वारा तमाम राष्ट्रों ने जोड़ता खलासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने अपनी जवाबदारी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सांजे फ्रांस की मुलाकात में भागरूप पेरिस पहुंचे। भारतीय डायस्पोरा सभ्य आगमन योजना स्वागत तैयारी चाली रही है।

0: कि भारत और फ्रांस के बीच जनसंख्या संबंधों को और मजबूत करेगी। महेश सुप्रे, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आवतीकाले मध्य प्रदेश में 5 दिवसीय प्रवास में जशे। तेओ अहीं 22 जून सुधी बैतूल, ओंकारेश्वर और जबलपुर में विविध कार्यक्रमों में भाग लेशे और श्योपुर में प्रसिद्ध कुरो नेशनल पार्क में मुलाकात पण करशे। तेमना प्रस्तावित बैतूल प्रवास कार्यक्रम की तैयारी संदर्भे आज ट्रायल लैंडिंग और कारकेड रिहर्सल योजाशे। केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयले मोनाको में प्रिंस आल्बर्ट द्वितीय साथ मुलाकात करी। एक सोशल मीडिया संदेश में श्री गोयले जणाव्यू कि मुलाकात दरमियान नवीनता और उभरती टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भारत मोनाको भागीदारी ने विस्तृत करने अंगे चर्चा करी। विश्वास व्यक्त करो कि भविष्य में भारत मोनाको संबंधों वधु मजबूत बनशे। पुडुचेरी मंत्रिमंडल में आज 3 नवा मंत्रियों समावेश साथ मंत्री परिषद विस्तार थो। लोक निवास खाते आयोजित समारोह में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस धारासभ्य पी राजवेलू और वीपी

सभी श्रोताओं को नमस्कार। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं सुमन कल्याणपुर की आवाज में बोंदिया बन गई मोटी फिल्म का गीत। गीत को लिखा है भरत व्यास ने और संगीत से संग्रह है सतीश पाटिया ने।

अमित सुनता है आशा भोसले की आवाज में गीत गाया पत्थरों में फिल्म का गीत, बोल है हसरत जयपुरी के।

गायब सुन तो है शक्ल बदलने का लिखा, रवि का संगठबद्ध किया घूंघट फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज में।

0: इस पर आकाशवाणी के अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और भोज केंद्र से आप सुन रहे हैं जय भारती कार्यक्रम।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक ट्रैक पर। हमारे स्टेशन लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म दुल्हा दुल्हन से, जिसे गाया है मुकेश ने, गीतकार इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी, अमन जी।

फिल्म का नाम है वारंट, एवं लता मंगेशकर और मुकेश के, बोल प्रेम धवन के, संगीत रोशन का।

0: दोस्तों के लिए कार्यक्रम। सरिया कश्मीरी के अहमदाबाद वडोदरा राजकोट और भोज केंद्र से किया गया। थोड़ी ही देर बाद सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित दोपहर समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम।

सुरक्षा की स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केन्द्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा, भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त में 2025 छब्बीस में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रूपए पर पहुंचा। 2020-21 की तुलना में 110% की वृद्धि। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में परिवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3-1 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ में जारी। समाचार विस्तार से।

0: सेवन नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संबंधित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केन्द्रित कई घोषणा घोट लिए हैं। अपने बयान में नेताओं ने अमरीका ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और एक अन्य घोषणा में नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। G7 देश के नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिशें तेज करने का संकल्प लिया है। इसमें वे कमजोर मध्यम आय वाले देश भी शामिल है जो अभी कोरोना महामारी के कारण G20 के कर्ज रहित ढांचे के लिए योग दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमरीका के वाशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों से क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार एवियन से G7 सम्मेलन के घटनाक्रमों पर ताजा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जी अंकित, दोनों नेताओं के बीच किन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है?
1: जी लगी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है ये कई गाड़ी में हुई है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और ब्रीफिंग सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाह इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर बात हो सकती है। देखिये, भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पैरोकार रहा है। ऐसे में उम्मीद बताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा

शांति से जानकारी के लिए श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सभी मुद्दे हिस्सा लेंगे। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डर लेयन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता

hastaları webseye www.nozelair.com.tr on numara Nozel Air App ve Google'de. Excelente rezonasyon ne kadar ki altın rock ko kadar bardast ne kadar ki nitik se lekar surgical strike balakot aur operation sindhu jaise nirnayak karyakram tak भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसके संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में सचिन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रूपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रूपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है।

0: 2021 में इसमें 1 से 10% की वृद्धि हुई है, जबकि आंकड़ा 84,000 करोड़ रूपये से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रूपये की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सफलता से महत्वपूर्ण पायदान रहा है। माईगोव के एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसे भारत में जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6वां सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी के विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत में उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था।
1: ये मैं अपन संस्कृति
0: भारत आज विश्व के शीर्ष 10 कृषि

0: sunset has been very good.
1: वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वार्षिक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य

जैसलमेर में सुरक्षा बलों ने राज्यभर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक विंग रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।

0: समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स एट एआईआर न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की हिजबुल्ला और सैन्य कार्रवाई की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्हें इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाई के संचालन में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
1: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल में

0: गलत पर बनी रहेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर 78.66 डॉलर हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। पहले समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 1 विकेट पर 6 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। यह मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ

सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अब समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती देने संबंधी तंत्रों के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की जरूरत पर बल दिया। सभी के लिए संतुलित समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने पर केंद्रित इस सत्र में उन्होंने अफ्रीका, लैटिन अमरीका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजनाओं का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने संपर्क और व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भागीदारी तैयार करने का भी सुझाव दिया। इसके अंतर्गत G7 भारतीय प्रतिभाओं और विकासशील तथा अल्प विकसित देशों को एक साथ लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ठोस वृद्धि से समावेशन और लोगों के कल्याण को मजबूती मिलती है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ भारत की विकास गाथा के बारे में भी बताया। इसमें G7 सदस्य देश, सहभागी देश, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ आज शाम होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर सभी की नजरें हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह द्विपक्षीय बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर प्रमुखता से बात होगी। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज जल डब्बे को फिर से खोलने के लिए एक समझौता तय किया है। तक हुए काम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा के अहम मुद्दे पर भी बात कर सकता है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच व्यापार से जुड़े सभी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो।
0: इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारत और फ्रांस ने पेरिस में वेबाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन पर नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष

0: फाइनेंस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कार्य मंत्री एनएलई हेमंत ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक प्रभावशाली वृद्धि है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रेलवे आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेल मंत्रालय ने कहा कि ये परियोजना सिग्नलिंग अवसंरचना के आधुनिकीकरण और रेलवे सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले विद्यार्थियों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया।
1: 8-10 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
0: पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है। लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 46 ओवर में 6 विकेट पर 380 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन ने शतकीय पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जानते हो दोस्त, जैसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है। आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर

0: है जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी है।
1: मैंने ये पर खबर छे कि जे व्यक्ति ने नाम में टोकन हो

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मनाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: चमक की आधुनिकता। बुलेट ट्रेन अने वंदे भारत में गतिशीलता की रखाता एक नवा भविष्य में अने गगनयान का भारत में आत्मविश्वास है। 12 वर्ष की आ यात्रा छे गुजरात में अंत्योदय अने गरीब कल्याण सेवा अने सुशासन पीएम आवास हर घर जल किसान सम्मान अने आयुष्मान कवच की मजबूत तथा जन जन में आत्मविश्वास ने भारत माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल ने प्रयासों की देश में ग्रोथ इंजन गुजरात बनी रहू छे ग्रीन एनर्जी अने भविष्य की आधुनिक टेक्नोलॉजी में पावर हाउस आ विकास ना नवा यज्ञ ने वधु वेगवंत बनाइए विकसित भारत माटे विकसित गुजरात बनाइए 12 वर्ष विश्वास ना विकास ना जन कल्याण ना
1: માછીમારી કરતા અને દરિયામાં નશીલા પદાર્થો ની જાણ તુરંત મરીન પોલીસ ને કરી દીધી.

0: जी बहुत दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया

0: पास में 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मनाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर।

प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गांव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्ते, ही आकाशवाणी आहे। हाणे तव्हां माण्हू खूब प्रमाण खां ख़बरूं ॿुधंदा। सभ खां अॻियां मुख्य ख़बरूं। प्रधानमंत्री मोदीअ फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन जे अहम कार्य इजलास में शिरकत कई। प्रधानमंत्री मोदीअ फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन खां अॻु जर्मनी जे चांसलर सां बहिरी बैठक कई। प्रधानमंत्री मोदी अॼु G7 समिट दौरान अमेरिका जे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सां मुलाक़ात कंदो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट ऐं ऑपरेशन सिंदूर जो मिसाल ॾींदे चयो त भारत जी ख़ुदमुख़्तियारी सां को बि समझौतो कोन कयो वेंदो। ऐं गुजरात जे वडोदरा में हिकु ट्रक ऐं बस जे टकराइण वारे हादसे वाक़िए में 6 शख़्स फौत ऐं 27 ज़ख़्मी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐं गृह मंत्री अमित शाह दुख ज़ाहिर कयो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस जे एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में हिकु अहमियत भरियल कार्य इजलास में चयो त अंतर्राष्ट्रीय माली संस्थाउनि खे अहिड़ो सिरिश्तो तयार करण घुर्जे जेको तरक़ी कंदड़ मुल्कनि खे आर्थिक मज़बूती अदा करे। इजलास जो विषय हो सभिनी जे लाइ तवाज़नी शमूलियत ऐं लगातार आर्थिक वाध खे ओज ॾियण। हुन अफ्रीका, लैटिन अमरीका ऐं प्रशांत उपबेट मुल्कनि खे ॻंढींदड़ राब्तो योजनाउनि जी पिण तजवीज़ पेश कई। श्री मोदीअ राब्तो ऐं वापार में तेज़ी आणण वास्ते अंतर्राष्ट्रीय मुताबिक़ जंगी भाईवारी तयार करण जो पिण सुझाव ॾिनो। इन जे तहत G7 मुल्कनि जी मुड़ी सीरप भारतीय क़ाबिलियत ऐं ग्लोबल साउथ जे मुल्कनि खे गॾु आणे सघिजे थो। इन में G7 मेंबर मुल्क, साथी मुल्क, अंतर्राष्ट्रीय माली फंड तोड़े आर्थिक सहकार ऐं विकास संगठन जे एवज़ भाग वरितो। इन विच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐं अमेरिका जे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सां गॾु अॼु शाम थींदड़ बहिरी बैठक ते सभिनी जूं नज़रूं आहिनि। असांजे खातो ॼाणायो त बैठक दौरान मुख़्तलिफ़ खितनि में बाहिमी सहकार खे मज़बूत करण, तोड़े आपसी मुफ़ाद जे इलाक़ाई ऐं आलमी मुद्दनि जे तबादले ख़्याल थी सघनि था। पेश आहे हिकु रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह गोलमेज से बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर प्रमुखता से बात होगी। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज बंदर के मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौता तय किया है। तक हुए काम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा के अहम मुद्दे पर भी बात कर सकता है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच व्यापार से जुड़े सभी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन कॉल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस जे एवियन में G7 शिखर सम्मेलन खां अलॻि जर्मनीअ जे चांसलर फ्रेडरिक

0: ਟੂਡੇ ਪੋਸਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਂ ਗੱਡ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰਹੀ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬਣੀ ਨੇਤਾਨ ਵਪਾਰ ਸਿਹਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਰਕਸ਼ਾ ਆਈ ਟੀ ਐਂਡੀਅਨ ਖੇਤਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਹਮੀ ਸਹਿਕਾਰ ਕੇ ਅਨਾ ਵਧੀਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਈ ਹੁਣ ਬਣੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕਾਫਤੀ ਲਾਗਾਪਨ ਕੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪਰ ਮਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਜੋ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੈਰਿਸ ਪਹੁੰਚੇ ਦੋ ਅਸਾਂ ਦੇ ਖਾਤੋਂ ਬਣੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਚਨ ਜੋ ਬੇਸਬਰੀ ਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ
1: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख कृषि कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी सीईओ के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक एक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक त्रिवार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में त्रिवार्षिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों स्टार्टअप्स निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संवाद करेंगे।
0: भारत और फ्रांस पेरिस में वीवा टेक 2026 में भारत मंडपम के मौलिकते नवाचार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक में सहकार देने वाले कोलबत्ता जी तस्दीक कई इन मौके पे मरकजी वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तोड़े फ्रांस जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल कार्य मंत्री एम ए ली हेनान्स बनी मुल्कन जी विच में वधंदड़ रणनीतिक भाईवारी जे बारे में गाण मालूमात दिनी ही खबरों तभी आकाशवाणी पर बुधी रहे आयो ही खबरों तभी असानी यूट्यूब चैनल एयर न्यूज गुजरात पर पन बुधी सको था वधी तक खबरें की तफसीली के लिए तवा असानी वेबसाइट newsonair.gov.in के फॉलो करे सको था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चल रहे तो माली साल 2025 में भारत जो सालाना रक्षा उत्पादन हेलो करें के उच्च सतह 178,000 किलो रुपए ताई पहुंची चुको है। श्री सिंह चाहे तो यह हासिलात गुजरे माली साल जे 154,000 किलो रुपए के उत्पादन के मुसाबत में 15% का अपना वधिक जी असराती वाधा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चाहे तो आतंकवाद के कतल बर्दाश्त न करने वाली नीति का वठी करे सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट ऑपरेशन सिंदूर जैन फैसले जोगी कार्रवाई कई भारत चिट्टो संदेश ॾिनो आहे त हुन जी खुद मुख़्तारी सां को बि समझौतो कोन कयो वेंदो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह चयो त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काबिल क़यादत में भारत पंहिंजी क़ौमी सलामती ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव ॾिठो आहे। गुजरात जे वडोदरा में हिक ट्रक ऐं खानगी बस जे टकराइजण वारे हादसे वाक़े में 9 साल जे हिक ॿार समेत 6 शख़्स फौत थिया आहिनि। इन हादसे में 27 माण्हू पिण ज़ख़्मी थिया आहिनि जिन खे इलाज वास्ते वडोदरा जी SSG अस्पताल में भर्ती करायो वियो आहे। इहो हादसो सुबुह सवेल अटकल 4 बजे कोटंबी स्टेडियम वेझो उन वक़्तु थियो जॾहिं बांसवाड़ा खां सूरत वेंदड़ हिक बस हिक बीठल ट्रक सां वञी टकराइजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐं गृह मंत्री अमित शाह गुजरात जे वडोदरा ॻोठाणे इलाइक़े में थियल इन हादसे में गहरो दुख ज़ाहिर कयो आहे। भारतीय जनता पार्टी अॼु लोकसभा में मुखालफ़त जे नेता राहुल गांधीअ मथां नीति जे बारे में इम्तिहान खां अॻु शागिर्दनि जे मन में तनाव पैदा करण ऐं हुननि जी एकाग्रता यानी ध्यान भंग करण जो रोह मिलियो। पार्टी हेडक्वार्टर में इक़बाल मवेशी सां ॻाल्हाईंदे भारतीय जनता पार्टी जे नुमाइंदे सुधांशु त्रिवेदीअ चयो त
2: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
0: आबोहवा महकमे चाहे तो

स्टॉक एक्सचेंज जो सेंसेक्स अगले 377 पॉइंट वृद्धि करे 77,196 के बंद क्यों उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो निफ्टी पर 97 पॉइंट की वृद्धि से 24,086 पे पहुंचो। ओमान में भारतीय सिफारत खाने माउंट सैकेड हेलो हले महायाती विमानदारन बिन भारतीय नागरिकन आदित्य शर्मा है शिवानंद चौरसिया जे मरण जी स्वदेश वापसी जी तस्दीक कई है। आखिर में मुख्य खबरों एक बार ग्यारह बदला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के अहम कार्य इजलास में शिरकत कई। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन का अलग जर्मनी के चांसलर से बहन में बैठक कई। प्रधानमंत्री मोदी अज G7 समिट दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कंदो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट में ऑपरेशन सिंदूर जो मिसाल दींदे तो भारत की खुदमुख्तियारी से को भी समझौतो को वो गुजरात के वडोदरा में एक ट्रक और बस के टकराए जाने वाले हादसे वाक्य में 6 शख्स फौत 27 जख्मी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह

रात 8 बजे हवा महल में आप सुनेंगे नाटिका मेन्यू कार्ड, मूल कहानी ओ हेनरी, हिंदी नाट रूपांतर मुरली मनोहर जोशी, निर्देशन मुख्तार। रात 9:30 पर आज के कंकाल कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता मोतीलाल पर। रात 10 बजे छाए गीत प्रस्तुत करेंगे ममता किनी जोशी। गलती जाए रात 10:30 पर और रंग तरंग रात 11 बजे। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नजर कल के मुख्य

कल सुबह 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम जागो सुबह होगी। सुबह 6:45 पर संगीत सहिता में कल आप सुनेंगे श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार होंगे वायलिन वादक पंडित असल कंडारा। कल आप इसका दूसरा भाग सुनेंगे, साथ ही इसका पुनः प्रसारण होगा शाम 6:45 पर। पुराने फिल्मी गाने आप सुनते हैं गुलेब से गीत कार्यक्रम में समय होता है सुबह 7 बजे।

যেতে হবে না তার মৃত্যু হবে। इसका पुनः इसका प्रसारण होता है सुबह 9:30 पर और पुनः प्रसारण रात 9:30 पर 11 बजे लेकर आएंगे रंग तरंग। 12:05 पर यादव की महफिल सजेगी। 1 बजे आपका पसंदीदा कार्यक्रम होगा सुरीला सफर।

कार्यक्रम शाम 4 बजे पिटारा में गीतों भरी कहानी होगी मेरी मकान मालकिन। पुराने नए पुराने कार्यक्रम भी करेंगे शाम 5:30 पर।

आजकल वैकल्प स्मार्ट पर इंद्रधनुष के अंतर्गत गुलदस्ता कार्यक्रम होगा रात 8 बजे हवा महल में। नाजमीन के लिखे झलकी सुनेगा पुरातत्व के तत्व। आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9 बजे। 10 बजे छाया गीत प्रस्तुत करेंगे रांचल अशोक। ढलती जाए रात 10:30 पर और रंग तरंग रात 11 बजे।

अभी आपने लता मंगेशकर के स्वर में भक्ति रचना सुनी, पूर्ण थे राम तेरे गंगा मैली। गीत संगीत योगेंद्र जैन का था। अब सुनिए आक्रोश फिल्म का भजन वंदना खांडेकर के स्वर में। वसंत देव के लिखे इस गीत की धुन बनाई है अजीत बर्मन ने।

0: आज तक भारतीय प्रस्तुत है गज वाद्य पर आधारित इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी। कलाकार डॉक्टर प्रकाश महाडिक।
1: श्रोताओं, आज हम गज से बजाए जाने वाले एक और वाद्य दिलरुबा पर बात करेंगे। इसके नाम से ऐसा प्रतीत होता है कि यह मुगलकालीन वाद्य है, किंतु मुगलकालीन वाद्यों में इस नाम का अथवा इसके स्वरूप से साम्य रखने वाला कोई वाद्य दिखाई नहीं देता है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक के ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं है। अतः स्पष्ट है कि इस वाद्य की रचना आधुनिक काल में ही की गई है। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति का आधार सारंगी मानते हैं। सुविधा युक्त गज वाद्य की आवश्यकता होने के कारण इसका निर्माण किया गया। यह भी संभव है कि इसराज की मृदु ध्वनि को गंभीर बनाने की दृष्टि से इसराज में ही कुछ परिवर्तन किए गए हों, फलस्वरूप दिलरुबा वाद्य की उत्पत्ति हुई हो। इस संभावना को भी अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक प्रचलित ताउस वाद्य के नीचे लगे मयूर वाले भाग को हटाकर उसके स्थान पर सारंगी का मंथन अर्थात नीचे वाला भाग लगाकर इसका निर्माण किया गया हो। उत्पत्ति का कारण जो भी रहा हो, किंतु यह सत्य है कि दिलरुबा वाद्य सितार और सारंगी का मिश्रित रूप है। दिलरुबा वाद्य तीन आकार में प्रचलित है। आकार के अनुसार ही कुंडी और दान का नाम रखा जाता है। दिलरुबा में 19 पर्दे होते हैं जिन्हें आवश्यकता अनुसार थोड़ा सजाया भी जा सकता है। इसमें मुख्य चार तार होते हैं। कुछ दिलरुबा में 6 तार भी लगाए जाते हैं। इसमें 20 अथवा 22 तर्गों को लगाया जाता है जिन्हें राग के अनुसार मिलाते हैं। कुछ कलाकार तर्गों को अचल चाक में रखते हैं। दिलरुबा के तार अलग अलग पद्धति से मिलाकर वादन करने का प्रचलन रहा है। फिर भी सामान्यतः इसके बाज के फौलाद के तार को मंद्र सप्तक के मध्यम में, इसके बाद के फौलाद के तार को मंद्र सप्तक के शरद स्वर में, तत्पश्चात के पीतल के तार को अति मंद्र सप्तक के पंचम स्वर में और अंतिम पीतल के तार को अति मंद्र सप्तक के शरद स्वर में मिलाते हैं। तर्गो हेतु पीतल के तार प्रयुक्त करते हैं। ऊपर आर के पास तरफ के 5 तार तथा शेष तरफ के तार दान के बाजू में लगाने का प्रचलन है।

किया जाता है यह गैस तारों पर घर्षण करती है। बाण के पीछे की ओर बाएं हाथ का अंगूठा रखा जाता है और आगे की तरफ से तर्जनी, मध्यमा और अनामिका अंगुलियों से कान, खटका, मुड़की, गर्वक और घसीट के साथ विभिन्न स्वर निकाले जाते हैं। दिलरुबा के नाम से स्पष्ट है कि हृदय को मोहित करने वाला एक सुंदर, मधुर और आकर्षक वाद्य है, किंतु दुख की बात है कि अब इसका प्रचलन कम होते जा रहा है। अब इसे दुर्लभ वाद्यों की श्रेणी में रखा जाता है। लगभग 50 वर्षों पूर्व दिलरुबा

0: रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर रेड्डी। आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से मैं कहीं कहीं अपनी भाषा में गलत का प्रयोग करता था, शास्त्री मेरे अंदर था और मैं बहुत विरोध किया करता था। वो स्वाभाविक रूप से मेरा गल निकलता था किसी मुद्दे पर। वो कुछ लोगों ने कहा कि आपकी बात अच्छा गल बोल लेते हैं। ये मेरे मजे की बात है कि बाद में चल करके गल मेरी प्रयोग बना हो गई।
0: सुनाना भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ
2: प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट।

0: comunque sugar una che c'è anche sbagliata la fatta lo che c'è anche sbagliata ok
1: da se vi dopo gore ma da che vate pinti su sian cervici self vive di arte per नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करे। सत्र का विषय था सभी के लिए संतुलित समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। उन्होंने अफ्रीका, लैटिन अमरीका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजना का भी प्रस्ताव रखा। श्री मोदी ने संपर्क और व्यापार में तेजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भागीदारी तैयार करने का भी सुझाव दिया। इसके अंतर्गत G7 देशों की पूंजी, भारतीय प्रतिभाओं और ग्लोबल साउथ के देशों को एक साथ लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ठोस वृद्धि से समावेशन और लोगों के कल्याण को मजबूती मिलती है। श्री मोदी ने सुरक्षित, त्वरित और प्रभावी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुनिश्चित करने पर केंद्रित कार्य सत्र में भी भाग लिया। इसमें G7 सदस्य देशों, सहभागी देशों और प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने डिजिटल नवाचार के भविष्य के बारे में चर्चा की। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। इसी बीच श्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ आज शाम होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर भी सभी की नजरें हैं। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह द्विपक्षीय बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर प्रमुखता से बात होगी। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज बल दबाव मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौता तय किया है। तक हुए काम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा के अहम मुद्दे पर भी बात कर सकता है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच व्यापार से जुड़े सभी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग श्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। भारत और फ्रांस ने पेरिस में वीवा टेक 2026 में भारत मंडपम के उद्घाटन पर नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कार्य मंत्री एने ली हिनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ओमान में भारतीय दूतावास ने एमटी सेटवेल्लो हमले में मारे गए दो भारतीय आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया के पार्थिव शरीर की स्वदेश वापसी की पुष्टि की है।

0: सेतुबंधु जहाज में हुए हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। गुजरात में वडोदरा में एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। आज तड़के बांसवाड़ा से सूरत जा रही बस एक खड़े ट्रक से टकरा गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। लीड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में नीदरलैंड्स ने भारत के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत ने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। इधर लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने सोलहवें ओवर में 2 विकेट पर 84 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: प्रस्तुत छे मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में G7 समिट दरमियान वैश्विक नेताओं साथ बातचीत करी। समिट में समग्र यात्रियों की सुरक्षा नो मुद्दों उठायो। राष्ट्रपति ट्रंपे ईरान ने चेतावनी आपी छे कि शांति करार में कोई पर फेरफार अथवा पालन करवामां निष्फळता तात्कालिक लश्करी प्रतिक्रिया लावी शके छे। गुजरात में जीरो टॉलरेंस नीति हेठ ड्रग्स विरोधी अभियान वधु कड़क बनावा राज्य पुलिस वाले नो आदेश। स्थानिक पुलिस ने NDPS केस नोंधवानी विशेष जवाबदारी सौंपाई। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल आरोग्य सेवाओं घर आंगणे मिली रहे ते माटे गांधीनगर खाते 51 टू व्हीलर और 9 फोर व्हीलर मोबाइल हेल्थ यूनिट्स नु लोकार्पण कर्यु। मानव कल्याण योजना हेठ लाभ मेळवा माटे आज थी कुटीर पोर्टल ऑनलाइन अरजियों माटे खुल्लु मुकायु। अरजदारो 10 अलग अलग ट्रेड माटे घर बैठा ऑनलाइन अरजी करी शकशे। 21 जूने आंतरराष्ट्रीय योग दिवस नी उजवणी ना भाग रूपे कच्छना अधिक कलेक्टर तरुण विठाणी नी अध्यक्षता में समीक्षा बैठक योजाई। कच्छ जिला कक्षा नो मुख्य कार्यक्रम स्मृतिवन खाते योजाशे। पश्चिम गुजरात में रेलवे नेटवर्क मजबूत करवा आदिपुर भुज सेक्शन डबलिंग प्रोजेक्ट्स ने रूपया 493 करोड़ खर्चे मंजूरी अपाई। इबोला संबंधित चिंताओं वच्चे अफ्रीका ने कोंगो में छेला 1 महीना थी फसायेला भुज ना असिस्टंट प्रोफेसर डॉक्टर अमीन समान सरकार ना प्रयासों थी 18 जूने वतन परत फरसे। कच्छना भूकंप में हरवा आंचकाओ नो सिलसिलो यथावत। आज भचाऊ नजीक 3.2 की तीव्रता नो आंचको नोंधायो। जून महीना में भूकंप नो आ त्रीजो आंचको छे। हवामान विभाग द्वारा आगामी 2 दिवस राज्य ना विविध विस्तार में हलवाथी मध्यम वरसाद नी आगाही करवामां आवी। मुख्य समाचार पूरा थया।

0: कन्याश्री भी मौजूद हती। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की उजवणी अंतर्गत सुरेन्द्रनगर जिला पंचायत कचेरी खाते आगामी विश्व योग दिवस उजवणी भाग रूपे व्यस्त दिनचर्या वच्चे कर्मचारी शारीरिक और मानसिक रीते स्वस्थ रही सके योग प्रत्ये जागृति लावानो प्रयास करायो हतो। डांग जिले में आंतरराष्ट्रीय योग दिवस की उजवणी संदर्भे बैठक योजाई गई। राज्य में आज उत्तर और दक्षिण गुजरात में वरसाद की आगाही है। हवामान विभाग ने जणाव्या अनुसार सौराष्ट्र अमरेली भावनगर और गीर सोमनाथ जेवा छूटाछवाया विस्तारों में हळवाथी मध्यम वरसाद की शक्यता है। जारी आवतीकाले अरवली महीसागर और दाहोद जिले में केटलाक विस्तारों में वरसादी माहौल रहेशे तेम हवामान विभाग नियामक डॉक्टर ए के दासे जणाव्युं छे।
1: 17 दिन से लेकर 20 दिन तक इसमें अगले 2 दिन के लिए अंदर से मध्यम बरसात का संभावना बताया गया है। गुजरात डिवीजन के लिए इसमें जो इसके पास आ रहा है 100% का संभावना अरवली के लिए दिया गया है। उत्तर गुजरात और दक्षिण गुजरात में बारिश से लेकर दक्षिण जिला है जैसे सुबह

0: अहमदाबाद मेरे सिटी खाते अंदाज 295 करोड़ रूपये का खर्चा अंतर्राष्ट्रीय सर्दी सुविधा होती सज्ज करोड़ संस्था आरामत ईजा ने पुनर्वसन केन्द्र की स्थापना करना है। आ प्रोजेक्ट में आयोजन प्रगति अंदाजी गांधीनगर खाते आरोग्य राज्य मंत्री प्रभुल पानसेरिया की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक योजाई गई। तो वलसाड नगर पालिकाए शहरीजनों में वेरा वसूलातना रिबेट स्कीम अमल में मूकी से जमा चालू वर्ष में मिलकत वेरा पर 20% वर्तर आप योजना में लाभ आगामी 30 जून सुधी मात्र है। अंत में मुख्य समाचार फरी एक बार मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले गांधीनगर खाते थी निपुण गुजरात कार्यक्रम में प्रारंभ कराया। राज्य में प्रथम बार टू व्हीलर आरोग्य यूनिट सेवाओं आज से प्रारंभ। वडोदरा में ट्रक और खानगी बस वच्चे अकस्मात में 7 लोगों ने मौत। भारतीय रेलवे 493 करोड़ रूपये ने खर्चे आदिपुर भूज डबलिंग योजना ने मंजूरी अपी। उत्तर और दक्षिण गुजरात तथा सौराष्ट्र में आज वरसाद की आगाही। आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा केन्द्र पर प्रादेशिक समाचार पूरा थे। हम पी आप रात 7:50 राष्ट्रीय समाचार सांभ सकस। नमस्कार।
1: अब हम आपको सुना रहे हैं अनुराधा पौडवाल का गाया सड़क फिल्म का गीत। तर्ज नदीम शरण के बोल।

0: मधु पान से मन बाहर कोना झंझट हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: बंगाली के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, मगर बरस रहे नहीं है। वो जो घुटन है, उस घुटन को बंगाली के गंधार में जब तक नहीं लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पर मेहनत की।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पंडित रोनू मजुमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: जय माला कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

से स्वागत है। नदीम शरण के संगीत निर्देशन में लीजिए सुनिए दीवाना फिल्म का गीत। बोल समीत के आवाजें कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की।

0: लिए साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर रेड्डी आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में रंग का प्रयोग करता था, हास भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विवाद किया करता था, तो स्वाभाविक रूप से मेरा दिल निकलता था किसी मुद्दे पर। वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बात छोटे बोल लेते हैं, ये मेरे मजे की बात है कि बाद में चल करके वही मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: सुनाने भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विजय।

है वेद भारती देश की सुरीली धड़कन इंद्रधनुष के अंतर्गत प्रस्तुत कार्यक्रम राग अनुराग कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं राग भैरवी से। फिल्म का नाम है श्री 420। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, बोल शैलेंद्र के, संगीत शंकर जयकिशन का।

0: नमस्कार आकाशवाणी समाचार प्रवेश अग्रेजा वाचे छे मुख्य समाचार। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में संबोधता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आंतरराष्ट्रीय नाणाकीय संस्थाओं ने विकासशील देशों ने आर्थिक सशक्त बनाए तेव तंत्र विकसावा जणाव्युं। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रप्रमुख डोनाल्ड ट्रम्प वच्चे फ्रांस में द्विपक्षीय बैठक। गुजरात में 493 करोड़ और महाराष्ट्र में 172 करोड़ रूपया खर्च की रेलवे परियोजना की मंजूरी। उत्तर प्रदेश और गुजरात में अलग अलग मार्ग अकस्मात में 12 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री दुख व्यक्त कर 3 मैच में एक दिवसीय क्रिकेट श्रेणी में बीजी मैच में भारत और अफगानिस्तान वच्चे लखनऊ में मुकाबलो। समाचार विगतवार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस में एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में संबोधता कहू आंतरराष्ट्रीय नाणाकीय संस्थाओं ने विकासशील देशों ने आर्थिक मजबूती आपे तेव तंत्र बनाव जइए। तमाम लोगों माटे संतुलित समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि ने प्रोत्साहन आपवो ए आ सत्र नो विषय हतो। श्री मोदी आफ्रिका लेटिन अमेरिका प्रशांत टापू देशों ने जोड़ती संपर्क परियोजनाओं पर प्रस्ताव मुक्यो हतो। संपर्क और व्यापार में वृद्धि लावा आंतरराष्ट्रीय ट्रैफिक भागीदारी तैयार करने पर मंतव्य रजू करो। अंतर्गत G7 देशों की मूड़ी भारतीय प्रतिभा वैश्विक दक्षिण देशों ने एक साथ लगाई सके। श्री मोदी कहूं कि चौक्स वृद्धि से समावेशी और लोगों विकास ने मजबूती मिले। सौनो साथ सौनो विकास सौनो विश्वास और सौनो प्रयास का मूल मंत्र साथ भारत ने विकास गाथा उल्लेख कर। दरमियान प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रप्रमुख डोनाल्ड ट्रम्प वच्चे आज योजना द्विपक्षीय बैठक पर सौनी नजर छे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की यह द्विपक्षीय बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर प्रमुखता से बात होगी। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज बंदरगाह के मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौता तय किया है। तक हुए काम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा के अहम मुद्दों पर भी बात कर सकता है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच व्यापार से जुड़े सभी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो कॉल।
0: उपरांत प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के अलग जर्मनी में चांसलर फ्रेडरिक मर्स साथ द्विपक्षीय बैठक योजी थी। सोशल मीडिया संदेश में श्री मोदी कहूं कि जर्मनी में चांसलर साथ संवाद लाभदायी रहो। कहूं कि बंने नेताए व्यापार रोकड़ चक्रीय अर्थतंत्र संरक्षण आईटी और अन्य क्षेत्रों में सहकार के माध्यम से द्विपक्षीय सहकार ने वु मजबूत करने अंगे चर्चा करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एवियन में G7 सम्मेलन दरमियान यूरोपियन परिषद प्रमुख एंटोनियो कोस्टा ने यूरोपियन संघ ने वडा उर्सुला वोन डेर लेन साथ द्विपक्षीय बैठक योजी थी। त्रणेय नेताओं परस्पर हित में प्रादेशिक और वैश्विक मुद्दों पर विचारों आदान प्रदान कर्युं। भारत यूरोपियन संघ मुक्त व्यापार करार पर वाटाघाटोना ताजेतरना निष्कर्ष की नोंध लई तेनी ऐतिहासिक सिद्धि गणावी हती। भारतीय रेलवे महाराष्ट्र में 172 करोड़ रूपया खर्चे सोनताली चिखली कोर लाइन परियोजना ने मंजूरी आपी है। तेना निर्माण थी पनवेल जंक्शन पर भीड़ घटे। रेलवे मंत्रालय जणाव्युं के आ नवी कोर लाइन करजत मार्ग पर चिखली और रोहा मार्ग पर सोनताली वच्चे एक महत्वपूर्ण रेलवे संपर्क अछत ने दूर करशे। तेनाथी ट्रेनों ने पनवेल जंक्शन में प्रवेश कर्या वगर तेमज एंजीन बदलया वगर करजत तरफ रोहा कोरिडोर वच्चे निरंतर कनेक्टिविटी मिलशे। आ उपरांत रेलवे गुजरात में 493 करोड़ रूपया खर्चे 49 किलोमीटर लांबा आदिपुर भूज खंड ने डेवलिंग योजना ने मंजूरी आपी। तेनो उद्देश्य कच्छ क्षेत्र में रेलवे संपर्क ने मजबूत बनावानो अने तेनी क्षमता वधारवानो छे। भारतीय रेलवे पूर्व रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली में आधुनिकीकरण 405 करोड़ रूपया परियोजना ने मंजूरी आपी छे। તે અંતર્ગત 32 રેલવે મથક પર રેલવે આધારિત ઇન્ટરલોકિંગ સિસ્ટમને ઇલેક્ટ્રોનિક ઇન્ટરલોકિંગમાં પરિવર્તિત કરાશે। રેલવે મંત્રાલયે આ પરિયોજનાને સિગ્નલિંગ માળખાના આધુનિકીકરણ અને રેલવે સુરક્ષાને મજબૂત કરવાની દિશામાં એક મહત્વનું પગલું ગણાવ્યું હતું। આ સમાચાર આપ આકાશવાણી પરથી સાંભળી રહ્યા છો। આ સમાચારનું જીવંત પ્રસારણ આપ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ AIR ન્યૂઝ ગુજરાત પર પણ સાંભળી શકશો। વધુ સમાચાર માટે અમારી વેબસાઇટ newsonair.gov.in/geo અને અમારા એક્સ હેન્ડલ AIR News_ABID ને ફોલો કરશો।

थी, लेकिन ये काम इतना मुश्किल नहीं है। तलवार की मदद से सीप का मुंह खोला जा सकता है, लेकिन क्या कभी आपने एक ऐसी लड़की की कल्पना की है जो एक टाइपराइटर की मदद से इस सीप रूपी दुनिया का मुंह खोल दे? जी हाँ, टाइपराइटर की मदद से शायद नहीं सोचा। तो आज सोचिए, एक शहर

खाने वाला है, यही ठीक रहेगा।

किस तरह से है वो बहुत कर रहा है। कभी कभी कितनी अजीब घटना घट जाती है। क्या पता था मुझे कि वाइटर से प्रेम हो जाएगा, लेकिन वाइटर कितनी मेहनत करता है उस फॉर्म में, क्या दिन उसी में जिता रहता है। काश काश उसके अनाज के गोदाम में उस दिन आग नहीं लगती, तो फिर मुझे इस तरह शहर को नहीं जाना पड़ता। क्या भयंकर रात थी उस दिन।

0: Walter? Walter?
1: सारा अब क्या होगा? मैं तो बर्बाद हो गया, लुट गया मैं तो सारा, सब कुछ चलकर खाक हो गया।
0: अब इस तरह रहने से क्या होगा वाल्टर? हिम्मत मत हारो, मेहनत करो और फिर से इस पानी को अनार से भर दो।
1: क्या सोचा था? क्या हो गया सारा? भविष्य के सारे सपने मिट्टी में मिल गए।
0: सपने तो बनते बिगड़ते रहते हैं वाल्टर, उनसे क्या घबराना, हम नए सपने दोबारा बन लेंगे। तुम मेहनत करो।
1: मगर अब हम कैसे सब कर पाएंगे? सारी पूंजी सारा अनाज आग में जलाकर खाक कर दिया है और सारा एक महीने से तुम्हारी नौकरी भी तो नहीं।
0: देखो वाल्टर, वक्त का हाथ कौन पकड़ सका है? गोदाम जम गया है तो इस तरह हाथ पर हाथ भरे बैठे रहने से कोई फायदा नहीं। उठो, पहले हाथ में धो लो, उसके बाद कुछ सोचेंगे। मुझे एक बात सोचिए, सिर्फ तुम्हारी मदद चाहिए।
1: कहो।
0: देखो वाल्टर, अगर हम इसी तरह गांव में बैठे रहे तो कुछ नहीं होगा। ऐसा करते हैं कि तुम भी यहीं रहो, वापस उस फॉर्म को खड़ा करो और मैं शहर चली जाती हूँ। वहाँ कुछ काम करके पैसा इकट्ठा करूंगी, बस जनवरी तक हमारे दिन फिर जाएंगे और बसंत की बहारों के दिन हम एक दूसरे से दोबारा मिलेंगे।
1: लेकिन बसंत का मौसम आने में तो अभी 10 महीने बाकी है और 10 महीने तक तुम सड़क नहीं सोना, ये नहीं हो सकता।
0: वाल्टर, मैं लड़की होकर हर मुसीबत से जूझने को तैयार हूँ और तुम मर्द होकर इतने परेशान हो रहे हो। सिर्फ 10 महीने की तो बात है और मैं टाइपराइटर ले जाऊंगी, जिससे और कुछ काम न मिले तो कम से कम टाइपिंग करके ही कुछ न कुछ करवा लूंगी।
1: 10 महीने सारा, सोच कर ही मन कांपने लगता है।
0: लेकिन 10 महीने बाद की तो कल्पना करो वाल्टर। और एक बात और भी है वाल्टर, उस दिन अलग रहकर हम अपने प्यार की सही कीमत काट सकेंगे।

0: बैठ रहे हैं?
1: यस मैडम, प्लीज हैव योर सीट।
0: थैंक यू।
1: देखिए अब बसंत का मौसम शुरू हो रहा है, इसलिए हमारे मेनू कार्ड भी पूरी तरह बदल जाएंगे, क्योंकि इस मौसम में कुछ नई चीजें ग्राहकों को दी जाएगी।
0: जी हाँ, कल मौसम का पहला दिन है।
1: जी क्या कहा आपने?
0: कुछ नहीं, कुछ नया। आप क्या नई चीजें बनाते हैं?
1: बस जरा हरी सब्जियों पर ज्यादा जोर देता है। हमारी खास डिश है वो अंडों के साथ सरसों की सब्जी।
0: सब्जी बहुत ज्यादा पसंद है।
1: जी किसे?
0: माफ कीजिएगा, मैं कुछ और ही सोचने लगी थी। हाँ, तो ये सब्जी आप रोज बनाएंगे?
1: जी हाँ, करीब करीब रोज ही, कल से ही हम इसे बनाना शुरू कर देंगे। आप भी देखिएगा, ये सब्जी हमारे यहाँ एक खास ढंग से बनती है।
0: तो ऐसा करते हैं कि इसे बड़े पैक में काफी स्पेस देकर पैक कर देते हैं।
1: वंडरफुल वंडरफुल।

0: तो सब्जी सूखी मूली का सांता आलू पनीर उपमा। क्या तुम कहाँ हो? कल से बरसात का मौसम शुरू हो रहा है, ये देखो तुम्हारी मनपसंद सब्जी में उबले हुए अंडों के साथ सरसों की सब्जी। वाल्टर तुम जरूर आ जाना। वाल्टर तुम्हारे पत्र भी बहुत दिनों से नहीं मिल रहे हैं। वाल्टर तुम जरूर आना, जरूर
1: आना।
0: लगते हैं हाँ आज तो नई सब्जी लाए होगे।
1: जी हाँ, और हमारे यहाँ की सबसे मशहूर सब्जी भी है। ये देखिए उबले हुए अंडों के।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं श्रेया घोषाल और टोची रैना की आवाजों से। फिल्म का नाम है शॉर्ट इन द सिटी। संगीत सचिन जेगर का, बोल समीर के।

0: आलस भरे सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी। आपके जीवन में भूलते हैं संगीत, भूले बसरे गीत, बदलेदार की आवाजें, धुनों की अनूठी दरबार, सुनहरे गानों का अंदाज आपके सभी को बनाए खास। भूले बसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: चित्रलोक कार्यक्रम की अंतिम पेशकश डेली सिक्स फिल्म से, जिसे आवाज दे रहे हैं मोहित चौहान। प्रसून जोशी के लिखे इस गीत के

0: Poke Solitaire. Die Folgen 3 November godine, franské eviony, dí sebo všichni sendené se elev, amerikáky ráštěpaty Donald Trump se měla krátký. Máme Poke Solitaire on hodnost žádnou hodně kvůli ty hodně pro prokta se čas hojí. První mohyně, German Chancellor Frederick Weitz, Evropě pašetky Dutch Antonio Costa, और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। टेनिस में नोवाक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि होर्मुज जलडमरु मुद्दे को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियो में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सलेंसी, हम जानते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत की लाखों शिफ्ट और दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूँ कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी तरह प्रशंसा करता हूँ।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरे होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करना चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के एवियो शहर की 2 दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने G7 के विभिन्न आउटरीच सत्रों में हिस्सा लिया जहां भारत को एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार 7वीं भागीदारी थी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है। आउटरीच सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। कल के एक सत्र में उन्होंने तेजी से जुड़ती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। आज के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एमेली हिमालफ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रेलवे आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रूपये की लागत आई गई। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रूपये की लागत से सोनपाली चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पूरे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 7वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
2: अभी थोड़े

0: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाले आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
1: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर का जाने का रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
0: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सफियान अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारे वेबसाइट www.newsonair.in

0: சிறி சமைப்பில் சிறி கடலில் நாங்கள் சிறுவீர்கள். பாரதிய வாயுசேனாமை கமிஷன் ஆபீசர்
1: आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए एआई और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देशभर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों एनआरआई पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में एनआरआई विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में

0: दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और बात मौसम की, मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है सुबोध मिश्र।
1: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक ऊपर 24,086 पर।

रही बात खेलों की, लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने टाइम समाचार मिलने तक 39वें ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉक्टर कुमार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में सामुदायिक भागीदारी, युवा सहभागिता और अंतर मंत्रालयी समन्वय के महत्व पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविलोर में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नागरिकों की सुरक्षा और हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ। दीजिए इजाजत।

0: नमस्ते, ये बोलो क्या बात हुआ अब भी। आज के फनकार कार्यक्रम में आज जिक्र उस अभिनेता का जिसने सन 1955 में बनी बिना रॉय की फिल्म देवदास में चुन्नी लाल की यादगार भूमिका निभाई थी।
1: तुम रुकी जाए, दिल हमारा रुक गया, मन तुम्हारे हाथ में भी झुक गया।

बढ़ने का नहीं गिना जाता है। सन 1910 में शिमला में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम था मोतीलाल राजवंश।

का सविता देवी के साथ फिल्मों में उनकी जोड़ी बड़ी मशहूर रही। इस जोड़ी की कुछ खास फिल्में थी डॉक्टर मधुरिका, जिसके लेखक थे जाने माने साहित्यकार कन्हैया लाल भारत लाल मुंशी, रंजीत पंडितों की फिल्म अछूत, जयंत देसाई की फिल्में दीवाली और शादी, जिनमें मोतीलाल और सविता देवी नायक नायिका थी। बाद में चतुर्भुज जोशी की सन 1941 में आई फिल्म परदेसी और ससुराल में वे अभिनेत्री माधुरी के साथ दिखाई दी। भारतीय सिनेमा की यात्रा पर शुरुआती दौर में पारसी रंगमंच और नौटंकियों के बेहद कलाबाजी भरे अभिनय की गहरी छाप पड़ी थी। अभिनय में अति नाटकीय का समावेश होता था, लेकिन कहा जाता है कि मोतीलाल ने हिंदी सिनेमा में स्वाभाविक और सहज अभिनय की शुरुआत की, जिसमें संवादों की अदायगी उतनी नाटकीय न होकर

शुरुआती पीढ़ियों में मोतीलाल नया कार्य थे, जैसे सन 1945 में आई तकदीर, सन 1937 में आई जागीरदार और सन 1938 में आई फिल्म हम तुम और वो। जागीरदार शर्मा की फिल्म मान और कल्याण में भी मोतीलाल ने काम किया था। 1945 में आई थी फिल्म पहली नजर, जिसमें वीणा मोतीलाल की नायिका थी। हम आपको याद दिला दें कि इसी फिल्म से पार्श्व गायक मुकेश की गीत यात्रा शुरू हुई थी। मोतीलाल मुकेश के चचे

सन 1945 में आई फिल्म बजरी, जिसमें सुरैया मोतीलाल की नायिका थी। इस फिल्म के संगीतकार थे अनिल विश्वास और गीतकार गोपाल सिंह।

0: दुनिया की सबसे उल्लेखनीय फिल्म मानी जाती है। सन 1952 में आई जमीन प्रोडक्शंस की मिस्टर संपाई के प्रसिद्ध उपन्यास पर बनी इस फिल्म में मोतीलाल ने एक शरीफ प्रभाष का किरदार निभाया था।
1: Thank you.

0: मोती लाल के फिल्म जीवन की सबसे यादगार फिल्म देवदास।
1: तुम क्या है?
2: वो कुछ ध्यान नहीं दिया।

0: साल 1959 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अश्री में मोतीलाल एक करप्ट बिजनेसमैन के किरदार में नजर आए थे।
1: Thank you.

छोटी छोटी बातें।

प्यार की यादें और उसका ख्वार जिंदगी भर जहन में ताजा रहते हैं। पहला प्यार सिर्फ किसी को पसंद करने का नाम नहीं, बल्कि महबूब की मौजूदगी में सुकून और गैर मौजूदगी में एक मीठा सा खालीपन महसूस करने जैसा होता है। पहला प्यार प्रेम की गहराई और मासूमियत का वो जादुई दार है जो हमें भीतर तक बदल

ये प्यार तारी नजर में प्यार का वो जादुई एहसास क्या कहने। प्यार में एक अलग ही दुनिया जीने लगता है मन, खुद से बातें करना, बार बार खुद को आईने में देखना, सजना सवरना, हर बात पे दिल की धड़कन का बढ़ जाना, सुर्ख चेहरा और एक अनजाने से घबराहट लिए मन इधर उधर भटकता है। बस महबूब के ख्यालों में खोया जाता है।

आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक भावनात्मक सफर है प्यार, हमारी बेचैनी, उम्मीद और रोमांस का अद्भुत मिश्रण। मन बेकाबू से अपने प्यार को थामे रखना चाहता है, प्रेम को पकड़ना चाहता है, छूना चाहता है, उसे महसूस करना चाहता है, और यही प्यार धीरे धीरे

के सावन में पहली बार भीगा हुआ मन का कोना जीवन में कभी नहीं सूखता। किसी के होने से भीतर एक ऐसा स्पंदन होता है जो खामोशियों में भी शब्द ढूंढ लेता है। कितना तेज, कितना सुंदर, कितना गहरा होता है ये प्यार। और जब दो टूटे बिखरे उजड़े हुए लोग आ मिलते हो अपने खोए हुए टुकड़ों को, बिखरे हुए वजूद को और उजड़े हुए चमन को खोजते खोजते, यही प्यार और तीव्र हो जाता है।

वही प्यार जो अब आपका संसार बन चुका होता है, इस शोर और भाग दौड़ भरी दुनिया में अब कोई तुम्हें बाहों का सहारा दे रहा है, अपने दिल में जगह दे रहा है, तो तुम बिना किसी डर के समा जाओ उसके बाहों में, बैठ जाओ उसके दिल के आंगन में, दुनिया का सारा बोझ उतार दो, खिलखिलाकर हंस पड़ो, निश्चिंत हो जाओ उसके आगोश में। कभी कभी एक गहरा आलिंगन वो कह जाता है जो शायद हजार शब्द नहीं कह पाते।

आप सुन रहे हैं वह भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीले धड़कन कार्यक्रम मन तन लेकर हाजिर में आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

0: Sure.
1: And that, including video organization of the

of warfare, as they say, or nature.

進んでいる間、パリのお仕事を待つまで。パリカンながら、デリヘケンのパーティーのサゲッカルバマービュー。パリカンショーに呼んだ場合のところで、一の字のアピカルバサリッタナーカリカンのサガリ・シャガギニ・パーシミリディ、バクティ・サンギ・コパリカン・アルジナ。シャガギニ・ディリスミリディ・アンゴッダラワ、ウィッディアーティ・ビシェ・プロフェッサー・アシュウィン・エン・アンダリノ・チッナ・ポークル・コワタラ。シャガギニ・ディリスミリディ・スリラン・ジェリト・マネスカン。シャガギニ・ディスタリスミリディ、フィルム・サンギ・コパリカン・ソール・マトリ。サトワギ・シダ・バハギト、サトワギニ・ディスミリディ・ブジュラティギト。आठवां ने बेस मिलते एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग नोवल की माहिती ने मनोरंजन नो कार्यक्रम सवारे सवारे नोवल ने दस मिनटे गुजराती की तो दस वाली ने बे मिनटे वडलो माटे का कार्यक्रम वडलो वृद्धाश्रम में व्यक्ति संख्या एक सामाजिक चिंता की व्यवस्था के विषय पर दक्षिण दबेरों वार्तालाप दस वाली ने पिस्तालीस मिनटे सुगम संगीत कार्यक्रम कलाकार रितिशा मुखर्जी वद्यावगिन ब्यामिनिटी फिल्म संकेत वकोरा बारवगिन ब्यामिनिटी गुजराती गीतो बारवगिन त्रिस मिनिटी महिलाओं माटे का कार्यक्रम सहियर एक वगिन दस मिनिटी सुगम संगीत कलाकार हंसा दवे एक वगिन त्रिस मिनिटी फौजी दोस्तों माटे का कार्यक्रम जय भारती ब्यावगिन चालीस मिनिटी गुजराती गीतो हमारी सांझी सभा में पांच बजे में दस मिनट फिल्म संगीत में कार्यक्रम गुलमोहर पांच बजे में पिस्तालीस मिनट लोक संगीत में कार्यक्रम कलाकार नगरभा प्रजापति वसुभा श्रीमाणी छ बजे में तीस मिनट युवा दोस्तों में कार्यक्रम युवाणी सात बजे गैर फिल्म की तो सात बजे में बाईस मिनट खेल में कार्यक्रम गांव नौ चौरो रात